0: मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। भक्ति श्रद्धा और आत्मिक शांति से भरा हमारा विशेष कार्यक्रम वंदना लेकर हाजिर हैं हम, जहां हर स्वर में ईश्वर का स्मरण और हर गीत में भक्ति की गहराई समाई है।

0: अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। ईश्वर का प्रेम न दिखाई देता है न छू सकते हैं, लेकिन जब वह मिलता है तो हर कमी पूरी हो जाती है। उसी दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है इन मधुर गीतों में।

जो टूटे हुए मन को भी अपनाते हैं, जो शमशान में भी शांति खोज लेते हैं, जो विष पीकर भी संसार को अमृत दे जाते हैं, उस महादेव की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं करुणा में होती है।

ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। वंदना कार्यक्रम को यहीं पे देते हैं विराम। नमस्कार। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन बिंदु।

जीवन में हम मित्र तो बहुत बनाते हैं। देखिए, मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसे हम स्वयं से बनाते हैं। सारे संबंधों में तो किसी न किसी कारण से सारे संबंध बनते हैं, लेकिन मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसे हम आप स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में मित्र बनाते हैं। मित्र कहीं ना कहीं वो एक ऐसा संबंध है जिस संबंधों के सामने सारे संबंध फीके पड़ जाते हैं। वह एक ऐसा संबंध है कि बचपन का व्यक्ति अगर बुढ़ापे में मिलता है तो बालपन का सारा आनंद सामने परिलक्षित होने लगता है। न दृष्टिगोचर होते हुए भी अदृश्य रूप से लगता है कि सब कुछ हमारा बचपना सामने आ गया। यह है मित्रता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सुदामा चरित्र को श्रवण किया होगा। सुदामा चरित्र साधारणतः हम एक भागवत की कथा में एक कहानी को मान लें, ऐसी बात नहीं है। सुदामा जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, पहले तो भयभीत थे कि पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, परंतु जब पता चला कि सुदामा जी आए हुए हैं, और इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुधर्मा सभा से और सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी का, देखिए, मित्रता में कभी भी भौतिकवाद का समावेश नहीं होना चाहिए कि धन के मित्र तो बहुत बन जाएंगे, कोई धनाढ्य है कोई गरीब है वो मित्रता नहीं है, वो तो समय के अनुसार लोगों का संबंध है। मित्रता तो अंतःकरण से होता है जिसमें बाह्य रूप से आपकी व्यवस्थाओं का कोई असर नहीं होता। सुदामा जी ने देखा कि इतनी बड़ी सभा से उच्च सिंहासन से उतर के मुझे गले से लगा लिया। सुदामा जी भी रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। कई दिनों तक सुदामा जी रहे, चावल खाए, इन सारी कथाएं आप जानते हैं। और जब सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी, भगवान ने अपनी पीताम्बरी धोती दी कि तुम पहन लो। कई दिनों तक, जितने दिनों तक रहे वो पीताम्बरी धोती पहने रहे, फटी धोती उनकी भगवान ने निकलवा कर अच्छे से वस्त्र धारण करवाया। जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रता की वैशिष्टता का मैं निवेदन कर रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा कि मित्र मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी समझ रहे थे, क्योंकि दो लोगों का दान दे ही चुके थे, दो लोगों का। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुम मेरी इस पीताम्बरी को निकाल करके अपनी धोती पहन लो, ये मेरी धोती है। तो सुदामा जी को लगा कि यह मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, द्वारिका का राजा है, और उसके बाद भी मेरी दशा को देख करके भी मेरी धोती निकालने को कह रहा है। सुदामा जी ने विचार किया, क्या करें, राजा की बात माननी ही पड़ेगी। तो उन्होंने धोती निकाल के अपनी फटी धोती पहन ली। सुदामा जी जब द्वारिका से

0: गुजरने लगे तो कुछ दूर पहुँचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि मित्र मैं फिर आऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहा बिल्कुल आइएगा। सुदामा जी को लगा कि अब तो कुछ दे दे। दूर पहुंचे द्वारिका के लोग देख रहे हैं, जैसे आया था व्यक्ति वैसे ही जा रहा है। बहुत दूर जाने के बाद अंतिम बार उन्होंने कहा मित्र मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा फिर आइएगा। सुदामा जी ने कहा कि एक बार आने के बाद तुमने कुछ मुझे दिया ही नहीं और कह रहे हो फिर आइएगा। अब प्रश्न उठा कि सुदामा जैसा ब्रह्मवित्त ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि जो जितेंद्रिय हो, जो सिंहोक्ष वृत्ति से जिसका जीवन चल रहा हो, ऐसे सुदामा जी मांग रहे हों और भगवान श्री कृष्ण न दे रहे हों, ये दोनों समझ में नहीं आती कि क्या कारण है। तो भाव है कि जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में प्रविष्ट हुए तो द्वारिका वालों ने देखा तो कोई कहा कि लगता है कोई विरक्त संत हैं, किसी ने कहा लगता है कोई याचक है जो भिक्षाटन के लिए आया है, अभी कुछ लेकर के जाएगा। तो भगवान ने विचार किया अगर मैं सुदामा जी को पीताम्बरी पहनवा के भेजूंगा तो पूरे द्वारिका वाले मेरे मित्र को एक संत और एक दिव्य ब्राह्मण के रूप में, चाहे दिव्य सिंहोक्ष वृत्ति को धारण करके ब्रह्मवित्त के रूप में न देख करके किसी भिखारी के रूप में देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए नहीं दिए कुछ प्रत्यक्ष रूप से कि मेरे मित्र को कोई भिखारी न कहे, और सुदामा जी इसलिए मांगते हैं कि मेरे पत्नी मेरे मित्र को कुछ न कहे। एक दूसरे के मान सम्मान को अपना मान सम्मान बना लेना, यह मित्रता का सबसे प्रमुख लक्षण है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गुरुपुर केंद्र है।

प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

रात 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार नरेंद्र कुमार शर्मा को। वार्ता का विषय होगा स्वतंत्रता आंदोलन और छायावाद।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9:50 पर। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे तलत अजीज। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर में भी। कलाकार होंगे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप रात्रि में भी सुन सकते हैं। कलाकार होंगे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज का संगीतकार। आप सुन सकेंगे शाम 7:31 पर

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है मानस कान।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीत मह पाठ मानस कान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्वदिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजीति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
6: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी NEET UG 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए IPL मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
4: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी CBT माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
2: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते।
2: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई।

0: के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपोलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त

चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अनाड़ी से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दाग से। किशोर कुमार की आवाज़ है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से। किशोर कुमार की आवाज, संगीतकार आर डी बर्मन है और गीत के बोल लिखे हैं मजरूस।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम पूर्वा सुहानी को देते हैं यहीं पे विराम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पत्रिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।

0: तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
2: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
3: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच PV सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने 90 वर्षों के सफर के बारे में। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का सेतु है, जहां गीतों में यादें थी हैं और शब्दों में अपनापन। साल 1926, जब एक छोटी सी शुरुआत ने भारत के कोने कोने में अपनी पहचान बनानी शुरू की, धीरे धीरे ये आवाज़ बन गई हर दिल की धड़कन, हर सुबह की शुरुआत और हर रात का सुकून।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था रवि ने।

आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की। आकाशवाणी का मूल मंत्र रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात जन जन के हित और सुख के लिए प्रसारण। यह सिर्फ रेडियो नहीं बल्कि जनता की आवाज़ है।

फिल्म जाल से ये गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में। संगीत सचिन देव बर्मन के थे, गीतकार थे साहिर लुधियानवी। आज़ादी के दौर में रेडियो लोगों तक समाचार पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बना। स्वतंत्र भारत की पहली सुबह भी लोगों ने रेडियो पर सुनी पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी रेडियो के माध्यम से पूरे देश ने सुना। आकाशवाणी का ये जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा उस दौर में।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अदालत से। लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत मदन मोहन का और गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अदालत से। आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भजन, गजल, फिल्म संगीत सबको एक मंच दिया। कई महान कलाकारों की आवाज़ पहली बार रेडियो से ही घरों तक पहुंची। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और बात कर ले मन्ना डे की, ये सभी आकाशवाणी के माध्यम से ही आपके घर घर तक पहुंचे और इनकी आवाज़ों को सबने सराहा।

फिल्म अनपढ़ से ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, मदन मोहन का संगीत और गीत राजा मेहंदी अली खान के थे।

कृषि कार्यक्रमों ने किसानों तक नई जानकारी पहुंचाई। आकाशवाणी के माध्यम से किसानों ने बहुत सारे नए उपकरणों, नई तकनीक और नए बीजों के बारे में जाना, नई तरह तरह की बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण प्रसारणों ने खेती को नई दिशा दी। रेडियो गांव में सिर्फ मनोरंजन नहीं, शिक्षा भी बना।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हमराही से, मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ें थीं, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी। तो श्रोताओं, बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उस सफ़र की जो हमारे दिलों में अभी तक ताज़ा है। एक समय ऐसा था जब घरों में लोग घड़ी देखकर रेडियो के सामने बैठ जाया करते थे, न कोई स्क्रीन न दृश्य, सिर्फ आवाज़ें, संगीत और संवाद, लेकिन उन आवाज़ों में पूरा संसार जीवित हो उठता था। हम बात कर रहे हैं रेडियो नाटक की। जी हाँ, रेडियो नाटक ने श्रोताओं की कल्पना शक्ति को जीवंत किया। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी ना, तो श्रोता अपने मन में पूरा दृश्य बना लेते थे। बारिश की ध्वनि, मंदिर की घंटियाँ, घोड़ों की टाप, जंगल की सरसराहट, सब कुछ सिर्फ ध्वनि से महसूस कराया जाता था। यही रेडियो नाटक की सबसे बड़ी ताकत थी।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म बैराग से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ से। गीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और संगीत दिया है आनंद बख्शी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी। तो श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनमोल यात्रा में आज हमने याद किया रेडियो नाटक के उस स्वर्णिम दौर को, जब सिर्फ आवाजें ही भावनाएं बन जाती थी। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ अब हम मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली गौरव की ऐसी अनगिनत स्मृतियों के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से।
1: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्याय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
2: ये लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए।

0: लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत, उस लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम ये आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
1: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
2: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस्कोप। इसके द्वारा आप क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज़्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते थे, दर्द ज़्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
1: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय, प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी साझा किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
3: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
4: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। 2 चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पझलिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को ₹50 प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डायटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयाँ, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एनआरसी में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी, तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश कांत।

0: मिली जुली आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे देशकान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: उर्दू कार्यक्रम।

0: उसके अलावा इस स्कीम ने सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को भी मजबूत बनाने में मदद दी है। अगरचे ये मंसूबा नहायत मुफीद है, लेकिन बाज़ इलाकों में मालूमात की कमी, अस्पतालों की महदूद तादाद और तकनीकी मसाइल जैसी दुश्वारियाँ भी सामने आती हैं। हुकूमत इन मसाइल को दूर करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुख्तसरन ये कि आयुष्मान भारत योजना एक इनकलाबी सेहत मंसूबा है जो गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ है। ये स्कीम न सिर्फ आवाम की सेहत बेहतर बनाने में मददगार है, बल्कि एक सेहतमंद और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में भी अहम किरदार अदा कर रही है। मरदमशुमारी क्यों ज़रूरी है? मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की तरक्की और मंसूबा बंदी के लिए नहायत अहम अमल है। उसके ज़रिए हुकूमत को मुल्क की आबादी, तालीम, रोज़गार, रिहाइश, ज़बान, मज़हब और दीगर समाजी व माशी हालात के बारे में सही मालूमात हासिल होती हैं। उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे तैयार करती है। मरदमशुमारी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये मालूम हो सके कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं और वहाँ किन सहूलतों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, पानी और रोज़गार की बेहतर मंसूबाबंदी मरदमशुमारी के एदाद व शुमार की मदद से की जाती है। उसके अलावा मरदमशुमारी हुकूमत को यह फैसला करने में मदद देती है कि मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में वसाइल को किस तरह तकसीम किया जाए। अगर आबादी का सही अंदाज़ा ना हो तो आवाम तक ज़रूरी सहूलतें सही तरीके से नहीं पहुँच पाती। जमहूरी निज़ाम में भी मरदमशुमारी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसी की बुनियाद पर इंतखाबी हलके बनाए जाते हैं और आवामी नुमाइंदगी का तायुन किया जाता है। मुख्तसरन ये कि मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और बेहतर इंतज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। यह हुकूमत और आवाम दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। भारत में होने वाली मरदमशुमारी 2027 मुल्क की आबादी, रिहाइश, तालीम, रोज़गार और समाजी हालत के बारे में मालूमात जमा करने का एक बड़ा कौमी सर्वे है। हुकूमत हिंद ने इस मरदमशुमारी को दो मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला किया है। मरदमशुमारी 2027 के मराहिल: पहला मरहला मकान शुमारी और घरेलू सर्वे। ये मरहला तकरीबन अप्रैल 2026 से जून 2026 तक चलेगा। इस मरहले में सरकारी अहलकार घर घर जाकर दर्ज ज़ैल मालूमात जमा करेंगे। घर की हालत, कितने कमरे हैं, पीने के पानी की सहूलत, बिजली और बैतुलखला की सहूलत, मोबाइल, इंटरनेट और दीगर सहूलियात, ख़ानदान के अफराद की बुनियादी मालूमात। इस मरहले को हाउस लिस्टिंग भी कहा जाता है। दूसरा मरहला आबादी की असल गिनती। ये मरहला फरवरी 2027 में शुरू होगा और 31 मार्च 2027 को ख़त्म होगा। इस दौरान हर फर्द के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज की जाएंगी, जैसे नाम, उम्र, जिंस, तालीम, पेशा, ज़बान, मज़हब, ज़ात, अज़्दवाजी हालत वगैरह। ये मरहला पापुलेशन इनुमेरेशन कहलाता है। मरदमशुमारी 2027 की ख़ास बातें: ये हिंदुस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन निज़ाम का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी खुद भी कुछ मालूमात ऑनलाइन भर सकेंगे। इस बार ज़ात की बुनियाद पर भी मालूमात जमा की जाएंगी। मरदमशुमारी क्यों ज़रूरी है? मरदमशुमारी के ज़रिए हुकूमत को ये मालूम होता है कि मुल्क की आबादी कितनी है, किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, तालीम, सेहत और रोज़गार की क्या सूरत हाल है, किन इलाकों में ज़्यादा स्कूल, अस्पताल या सड़कों की ज़रूरत है। इन्हीं एदाद दो शुमार की बुनियाद पर हुकूमत नई स्कीमें और तरक्याती मंसूबे बनाती है। तो सामाइन, आप सुन रहे हैं आज का हमारा खुसूसी ओबी प्रोग्राम कैंपस डायरी, जहां हम लेकर आते हैं तालीमी इदारों की जिंदा रवायात, नौजवान जहनों की ताज़ा सोच और तख्लीकी इजहार की दिलकश झलकियाँ। आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है इरम मेडिकल कॉलेज के खूबसूरत और इल्मी माहौल से, जहाँ सिर्फ तिब ही नहीं बल्कि अदब, एहसास और फिक्र की शमा भी रोशन है। सामईन, अक्सर ये कहा जाता है कि मेडिकल के तलबा का ताल्लुक सिर्फ किताबों, लेबॉरेटरीज़ और अस्पतालों तक महदूद है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। नौजवानों के दिलों में जज्बात की एक दुनिया आबाद होती है जो कभी नज्म की सूरत में, कभी अफसाने की शक्ल में और कभी ख्यालात की खूबसूरत मोतियों की सूरत में हमारे सामने आती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे इरम मेडिकल कॉलेज के चंद बासलाहियत तलबा से, जिनकी तख्लीकात ना सिर्फ उनकी इलमी मसरूफियात का अक्स हैं बल्कि उनके हसास दिल और बेदार जहन की तर्जुमानी भी करती हैं। ये तख्लीकात आपको कभी मुस्कुराने पर मजबूर करेंगी, कभी सोचने पर और कभी दिल की गहराइयों को छू जाएंगी। तो आइए चलते हैं इस दिलकश अदबी सफ़र की तरफ और सुनते हैं नौजवान कलमकारों की आवाज़, उनके लफ्ज़ों में छुपी कहानियाँ और उनके एहसासात की सच्चाई। जिन तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है उनकी इस्म ग्रामी हैं डॉक्टर सना खान, मोहतरमा सानिया तारिक और मोहतरमा शफक हुसना। तो बने रहिए हमारे साथ कैंपस डायरी में, आपकी समातों के गोश गुजार करते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं सना खान इरम इनानी मेडिकल कॉलेज से 2019 बैच की स्टूडेंट हूँ और मैं एक गज़ल गुनगाना चाहती हूँ जो दाग दहलवी साहब की है। नफ्ज़ भी बरकरार हैं, सांस भी चल रहा

पारसा मुझसे जुदा होता गया, मेरा सर झुकता गया और वो खुदा होता गया। फेर कर नजरें मिला मुझसे वो गैरों की तरह देखता।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है। मैं इरम इनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ बैच 2025 से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है खुद पर एतमाद। निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, खुद पर यकीन हो तो हर जीत आसान बनती है। शहर के कोने में एक पेंटर रहता था। वो अपनी बनाई गई तस्वीरों के लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर था। एक दिन उस पेंटर ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखने के बाद उसे लगा कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी इस तस्वीर को लोगों को दिखाया। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे उस तस्वीर के बारे में बताया और कहा कि देखो, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम वाकई जानना चाहते हो इसमें कोई कमी है या नहीं, तो तुम इसे एक ऐसी जगह ले जाके रख दो जहाँ से लोगों का आना जाना हो, और साथ ही में इसके एक बोर्ड भी रखना जिस पे तुम ये लिख दो कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उस पे निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानी और बिल्कुल वैसे ही किया। अपनी बनाई हुई तस्वीर को उस जगह पे रख के वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर निशानों से भर गई थी। वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ। वो अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसमें इतनी गलतियाँ निकाली हैं कि इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनी और वो कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहा कि सुनो, तुम अब एक काम करो, तुम दोबारा एक ऐसी ही तस्वीर बनाओ और उसे उसी जगह पे ले जाके रख दो, लेकिन इस बार तुम उस बोर्ड पे ये लिखना कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानते हुए ऐसे ही किया। दोबारा वैसी ही तस्वीर बनाई, लेकिन इस बार उसने ये लिखा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए, और उसे वहाँ पे रख के वहाँ से चला गया। जब शाम हुई तो वो वापस लौटा। वो अपनी तस्वीर को देख के हैरान रह गया क्योंकि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं थी। वो अपने दोस्त के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। उसके दोस्त ने कहा कि सुनो, जो लोग होते हैं उनका काम होता है चीज़ों में, लोगों में कमियां निकालना, गलतियां निकालना, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप इस कमी को ठीक कीजिए या फिर बताइए कि ऐसे इसे कैसे ठीक की जाए, तो वो लोग खामोश हो जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उस दिन उस पेंटर के एक बात समझ में आई, खुद पर एतमाद होना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इससे हम हर इम्तिहान जीत सकते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक हुस्ना है। हम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका टॉपिक है डिलीट बटन। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ का एक दिन डिलीट करने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन चूज़ करेगा? क्या वो दिन जब सब कुछ गलत हुआ था, या वो दिन जहाँ से सब बदला? ये कहानी है नैना की। नैना एक नॉर्मल सी कॉलेज जाने वाली लड़की थी, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, पर थोड़ी सी सेल्फ डाउट वाली। हर चीज़ परफेक्ट करने की आदत, और जब परफेक्ट ना हो तो ख़ुद को इल्ज़ाम देने की आदत। एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन डिलीट करो। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया। क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसने ईमेल ओपन किया, अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अपना वो दिन चुनो जो तुम मिटाना चाहती हो। नीचे एक बटन था सेलेक्ट। नैना की माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा ज़िंदगी में हर हार ज़रूरी होती है। जीत तुम्हें खुशी तो देती है, पर हार तुम्हें मजबूत बनाती है। पर नैना को ये बातें थोड़ी फिल्मी लगा करती थी। उसे लगता था डर का क्या फ़ायदा अगर उसे अवॉइड किया जा सकता हो। उसने बिना सोचे एक दिन चुन लिया, वो दिन जब वो इम्तिहान में फ़ेल हुई थी, वो दिन जब उसने ख़ुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया था। उसने क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन सब नॉर्मल था, कॉलेज, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, पर कुछ अलग था। नैना को वो हार याद ही नहीं थी, ना वो रात, ना वो आंसू, ना वो अफसोस, जैसे वो दिन कभी मौजूद ही नहीं था। शुरू में उसे ऐसा लगा कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ अधूरा लगने लगा। جیسے کوئی مخصوص چیز جو اسے یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ کچھ دن بعد ایک اور امتحان آیا، اس بار نینا پاس ہو گئی اچھے مارکس کے ساتھ۔ سب خوش تھے پر نینا کچھ فیل ہی نہیں کر پائی، نہ ریلیف، نہ ایکسائٹمنٹ، نہ کانفیڈنس، نہ خوشی، اسے صرف ایک خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ تب اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، ہار تمہیں اسٹرانگ بناتی ہے۔ تب اسے سمجھ آیا اس نے صرف ایک دن نہیں ڈیلیٹ کیا تھا، اس نے وہ اسٹرگل ڈیلیٹ کیا تھا جس نے اسے فیل کرنا سکھایا تھا۔ اس نے درد نہیں، اپنی ترقی کی بنیاد ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس رات نینا نے اپنا فون اٹھایا وہ ای میل ڈھونڈنے کے لیے، پر ان باکس میں کوئی ای میل تھا ہی نہیں، ڈیلیٹ بٹن کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ خود ہی اپنے درد سے بھاگ رہی تھی، کیونکہ زندگی میں ہم کچھ ڈیلیٹ نہیں کرتے، ہم بس انہیں محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سو مورل آف دا اسٹوری از، اپنے فیلئر، اپنے درد کو مٹانے کی کوشش مت کرو، وہی درد تمہیں وہ انسان بناتا ہے جو تم بنا درد کے کبھی بن ہی نہیں پاتے۔ اسی اسٹوری پر میں ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ شکریہ
2: سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی او بی پروگرام کیمپس ڈائری، جس میں ہم نے ارم میڈیکل کالج کی باصلاحیت طلبہ کی خوبصورت تخلیقات آپ تک پہنچائیں۔ یقیناً ان نوجوان آوازوں میں آپ نے جذبوں کی سچائی، خیال کی تازگی اور مستقبل کی روشن جھلک محسوس کی ہوگی۔ یہی نوجوان ہمارے آنے والے کل کے معمار ہیں، جو نہ صرف جسموں کا علاج کریں گے بلکہ اپنے شعور، حساسیت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے کی فکری و جذباتی رہنمائی بھی کریں گے۔ آج کی محفل اس بات کی گواہ رہی کہ علم اور ادب جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو شخصیت میں ایک نیا وقار اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ ان ابھرتے ہوئے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور دن اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं तलत अजीज।

रोशनी तेरी अंगड़ाइयों से मिली, जहन दिल को नई रोशनी, तेरे जलवों से मेरी नजर

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोशी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने, गाने गुनगुनाते।

पहला गीत आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के गीत थे और संगीत शंकर जयकिशन के थे। खफा हूँ खफा हूँ ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने, गीतकार थे आनंद बख्शी फिल्म बेमिसाल से। आइए सुनते हैं अगले।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार गुलजार हैं और संगीत दिया है खय्याम ने। फिल्म थोड़ी सी बेवफा।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नमक हराम से, किशोर कुमार की आवाज में। आर डी बर्मन का संगीत, गीत के बोल आनंद बख्शी।

0: कैसे कहें।
1: शर्मिली फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गोपाल दास नीरज के गीत हैं और संगीत एस टी बर्मन के हैं।

इस आवाज को आप सुन रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से। आनंद बख्शी की आवाज है। आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं, किशोर कुमार की आवाज है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
1: फिल्म जॉनी मेरा नाम, गायक किशोर कुमार, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीतकार

अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म भीगी रात से। मजरूह सुल्तानपुरी गीतों के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था रोशन ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया है मदन मोहन ने और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं एन इवनिंग इन पेरिस से, मोहम्मद रफी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत और गीत शैलेंद्र की।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाते गुनगुनाते यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित।

0: रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज सुनिए सत्यनारायण राजभर के गाए कुछ लोकगीत।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सत्यनारायण राजभर और साथियों के गाए लोकगीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुन रहे थे सत्यनारायण राजभर और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत पल फिल्म से

केके की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे पल फिल्म से। कॉलोनियल कजिन्स का संगीत था और गीत को लिखा था महबूब ने। अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है गुरु, चित्रा और ए आर रहमान की आवाज में।

0: ए.आर. रहमान और साथियों की आवाज़ में आप ये सुन रहे थे कवाली जुदा अकबर फिल्म से। इस कवाली को लिखा था काशिफ ने और संगीत दिया था ए.आर. रहमान ने।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: गीतांजलि सुन रहे हैं।
1: कुछ हंसी पल में चुन तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।
0: के की आवाज है, प्रीतम का संगीत है और गीत को लिखा है सईद कादरी। फिल्म है तुम मिले।

0: के की आवाज में तुम मिले फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत सुनते हैं रांझणा फिल्म से। एआर रहमान का संगीत है और
1: मन की बात है जन जन की,
0: सभी इस अंतराल की बात,
1: संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, अच्छा, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: रंजना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए।
1: इस नाटक में दो ऐसे अभागे बच्चे लोरी गाते हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने अवैध मानकर जन्मते ही मार दिया था। तो सुनिए नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए।

0: नागाहारू, दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं?
1: शायद मर्यादाएं टूट जाती हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं।
0: लेकिन लोग आखिर लड़ते ही क्यों हैं?
1: कुमी, शायद मर्यादाएं टूटने के बाद लड़ाई का शौक पैदा हो जाता है।
0: क्या लड़कर उन्हें शांति मिलती है?
1: मेरे ख्याल से जरूर मिलती होगी। और कुमी, मैं ये भी बता दूं, शायद चोट खाकर उन्हें खुशी ही होती हो।
0: फिर तो वो खुशी से मरते होंगे।
1: हाँ, शायद।
0: सुनो नागाहारू, क्या हम भी लड़ाई नहीं छेड़ सकते?
1: लड़ाई?
0: हाँ, अपनी लड़ाई।
1: अपनी लड़ाई? लेकिन किससे?
0: किससे? हाँ, किससे? अच्छा मान लो, अगर हम लोग किसी को तहखाने में बुलाएं।
1: तहखाने में?
0: हाँ, हम पूछें, क्या आप आज शाम खाली हैं? अगर वो कहें हाँ, तो उन्हें तहखाने में बुला लें।
1: हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हम बुलाएंगे किन्हें?
0: किन्हें? जिन्होंने हम लोगों की हत्या की थी, हम उन्हें बुलाएं तो कैसा रहे?
1: हाँ, अच्छा रहेगा, अपने माँ बाप को ही बुलाते हैं, क्यों?
0: ठीक, बिल्कुल ठीक।

0: बड़ी लंबी सीढ़ियां हैं, नहीं?
1: हाँ, जैसे भूतों की कहानियों वाली सीढ़ियां उतर रहे हैं हम लोग।
0: कौन सी सीढ़ियां?
1: मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। लगता है अभी किसी कोने से कोई प्रेत निकल कर आ खड़ा होगा।
0: नहीं, लेकिन नीचे उतरना आसान है।

0: दोबारा इतनी सीढ़ियां चढ़कर वापस लौटना ज्यादा मुश्किल है। मुझे हर कदम पर लग रहा है जैसे भूतों की मान नजदीक आती जा रही है।
1: मेरी तो सांस ही फूल गई है। कलेजे में अजीब ऐठन सी हो रही है। लगता है जैसे जैसे सीढ़ियां उतरेंगे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा।
0: नहीं ला, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े लेती।
1: मैं कोई बच्चा हूँ।
0: बच्चे? ओह, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी।
1: इतनी जोर से मत बोलो, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कि
0: हमारे अलावा और है ही कौन जो देखेगा?
1: पता नहीं, मुझे लगता है कोई हमें घूर रहा है। शायद वही बच्चे हो।
0: बच्चे?
1: हाँ, वही बच्चे जिन्होंने कहा था कि हम सीढ़ियों से नीचे उतर जाए। अगर वो जिंदा होंगे तो खासे बड़े हो गए होंगे।
0: तुम तो भूतों की कहानियां ज्यादा ही पसंद है। सपना तो नहीं देख रहे?
1: सपना? सही। लो, खिड़की से कुछ दिखाई देता है क्या?
0: मुझे तो लगता है हमारा किसी ने अपहरण किया है, हमें यहाँ बंद कर लिया है।
1: अपहरण?
0: अजीब बात है, ये वे बच्चे?
1: क्या वो बच्चे?
0: मेरा मतलब है उन्होंने कितनी मुलायमियत और इसरार भरी आवाज में हमें बुलाया था, कितनी शिष्टता से बातें की थी।
1: हाँ, यहाँ आने पर उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा था, माफ कीजिएगा हमारी वजह से आपको कुछ देर रुकना पड़ा, हम मेहरबानी करके सीढ़ियों से होकर नीचे उतरे।
0: हाँ, बिल्कुल इसी तरह कहा था, लेकिन तुम्हारी ही गलती है, तुम ही उनसे मिलने को इतने उतावले हो गए थे, तुम ही ने फटाफट सीढ़ियां उतरना भी शुरू कर दिया था।
1: बात यह है मुझे लगा कि वो लोग शायद किसी और के धोखे में हमें बुला बैठे हैं। मुझे थोड़ी उत्सुकता हो गई, और इसमें क्या है, कहा ही कुछ ऐसे गया था कि मैं मजबूर हो गया।
0: ओ, लेकिन अब होगा क्या? क्या खिड़की तोड़ोगे?
1: खिड़की? अच्छा, खिड़की खिड़की खिड़की खिड़की। कांच बेहद मजबूत है।
0: दोनों जोर लगाकर देखें, शायद दरवाजा ही खुल जाए।
1: दरवाजा? चलो आओ, आओ।

0: बेकार है, सुना बेकार है, नहीं खुलेगा।
1: हाँ, नहीं खुलेगा,
0: नहीं खुलेगा। सुनो, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें इस तरह बाहों में लिया है। युग बीत गए, तुम्हारे शरीर की कंध।
1: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इस बंद कमरे से नफरत हो रही है।
0: याद है, याद है तुम्हें, कभी मैं तुम्हारी बाहों को सूंघा करता था। फिर यकायक जाने क्या हुआ, बरसों का जुड़ा हुआ रिश्ता यकायक दिए की तरह बुझ गया।
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मुझे इस कमरे से डर लग रहा है।
0: तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर दी थी और मैं बहुत दूर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा था, लेकिन वो दिन,
1: पता नहीं ये कमरा इतना अंधेरा और गोल क्यों है।
0: दीवारें चौकोर भी हो सकती थी।
1: बस करो, बस करो, चौकोर दीवारों वाला होता तो और भी डरावना हो जाता। नहीं, मुझे चौकोर मकानों से और ज्यादा डर लगता है।
0: शायद चौकोर मुर्दा घर,
1: चौकोर संदूक,
0: चौकोर रेफ्रिजरेटर। रोने की क्या जरूरत है, मैं माफी चाहता हूं कि मैं
1: शायद कोई आ रहा है। पता नहीं किसी ने हमारी बातें सुन न ली हो। अभी तक तो ये रहस्य सिर्फ हम दोनों के बीच ही है।
2: ओ, मुझे सड़क की दुर्घटनाएं अच्छी लगती हैं।

0: अच्छी लगती है वयस्क
1: ये वही लगता है
2: वही
1: याद है बसंत का मौसम था हमने उसके मुंह पर कपड़ा लपेट कर उसे दराज में बंद कर दिया था उसके छटपटाते हुए हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए थे
3: मेरा दम घुट रहा है मुझे चक्कर आ रहा है कमरा ये कमरा घूम क्यों रहा है
0: कीजिएगा हमने आपको काफी इंतजार कराया हमारी वजह से आपको असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं
3: लेकिन इस तरह हमें यहां बंद करने का मतलब क्या था
0: हमने सिर्फ सीढ़ियां उतरने को कहा था लेकिन आप खुद यहां इस कमरे में आ गए
3: ठीक है लेकिन अब हमें यहां से बाहर निकालो
0: ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है
1: लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है इनका दिल कमजोर है ये कह रहे थे कि कमरा घूम रहा है
0: आपको घूमता हुआ महसूस नहीं हुआ कमरा तो सचमुच घूम रहा था ये बना ही ऐसा है
3: तुम हो कौन क्या चाहते हो
0: आपने मुझे पहचाना नहीं मम्मी मैं नागाहारू हूँ
1: नागाहारू कौन नागाहारू
0: मैं ये देखिए कागज का टुकड़ा जो आपने लिखकर लगाया था ये बच्चा 23 अप्रैल को पैदा हुआ था और इसका नाम था नागाहारू नागाहारू मतलब लंबा वसंत
1: दिन वो पैदा हुआ
3: सोच समझ कर बोलो और किसी के सामने इस तरह मत उगलने लग जाओ
0: डैडी क्या आप इससे इनकार करते हैं
3: इनकार करने न करने का क्या सवाल है इस कागज पर न तो तारीख लिखी है ना नाम कुछ नहीं लिखा मुझे मालूम है
0: ओ ठीक है बिल्कुल वैसे ही हैं आप जैसा मैंने सोचा था डैडी सच ये है कि वो इबारत मिटा ही दी गई थी जैसे मैं इस दुनिया से जन्मते ही मिटा दिया गया था क्यों मम्मी मुझे याद है मेरा मुंह बांधने के बाद मेरा दम घोट दिया गया था और मेरे ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर 1.5 बरस मुझे एक दराज

0: बंद रखा गया था।
1: लेकिन हम क्या करते, हम तो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां। हाँ, परिस्थितियां। दुनिया में बिना शादी किए पैदा हुए बच्चे का कलंक।
0: लेकिन क्या मुझे प्लास्टर में बंद करना जरूरी था?
1: कब्र तो प्लास्टर की ही होती है ना।
0: कब्र, ठीक है। देख रहे हैं आप, मेरी माँ ने स्वीकार किया कि उसने मेरी हत्या की थी।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हालांकि अब इससे क्या फर्क पड़ना कि मुझे मारा गया या नहीं।
1: तुम थोड़े से बड़े होते तो खेलने का मकान बनाने वाले लकड़ी के गुटकों से खूब खेलते।
2: देखो जी, तुम किसी ऐसे सवाल का जवाब मत दे बैठना जिस राज खुल जाने का डर हो।
0: तुम ठीक कहती हो मम्मी, मुझे बीते वक्त की याद आ रही है। वो देखो, छोटी छोटी खिड़कियां, लकड़ी के गुटकों की दीवारें और छत।
3: ओहो,
4: ये गुटके ठीक से नहीं सजाए थे नागारू।
3: देखी ना डैडी, सारा मकान गिर पड़ा।
1: कॉफी ले लो जी।
4: वाह, इसी की जरूरत महसूस हो रही थी, लाओ।
1: नागाहारू, अच्छे बच्चे, आओ तुम्हें एक संतरा छील दो।
3: छील दो, मुझे बहुत काम है, पूरा मकान बनाना है।
4: सुनो, तुम थोड़ी दुबली नहीं हो गई हो?
1: चलो, तुम्हारा ध्यान तो गया।
3: एक के ऊपर ये दूसरा, देखता हूँ कैसे नहीं बनता। गिरेगा? अच्छा गिर जा, मैं फिर बनाऊंगा।
4: सुनो जी,
3: क्या है?
4: इधर आओ ना। लगता है तुम फिर माँ बन गए।
1: तुम्हें मालूम हो गया?
4: कॉफी में चीनी कम है।
1: डाली तो।
4: चलो रहने दो, तुम्हें नागाहारू के लिए संतरे छीलने का वक्त मिल जाता है। मेरी कॉफी ठीक से बनाना मुश्किल लगता है।
1: फिर वही, पता है तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते।
4: हाँ ये सही है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? दुनिया क्या कहेगी, ये नाजायज बच्चे। नागाहारू, सुना तुमने, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे भी और तुम्हारी माँ को।
3: मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया। हाँ, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया।
1: नागाहारू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागाहारू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
0: थैंक यू मम्मी। कुछ लोग कहते हैं इस तरह जन्म देने के बाद बच्चे की हत्या कर देना एक सामाजिक पागलपन है। बहुत विकसित देश इसे शायद किसी और रूप में देखें। हो सकता है इसका संबंध युद्ध से हो, यानी युद्ध लोगों को नई जिंदगी का दुश्मन बना देता है। जो भी हो, चलिए मेरे मुंह पर भी लपेट दीजिए प्लीज मम्मी। अलविदा, अलविदा डैडी।
1: वो कितनी अच्छी बातें बोल रहा था, नहीं?
4: हाँ, खासी।
1: लेकिन यहाँ से निकलने का कोई उपाय हुआ ही नहीं।
4: इंतजार करो, हो सकता है रास्ता निकले। कमरा घूमना शायद बंद हो गया।
1: वैसे सच कहूँ, अब इस अकेले कमरे में उतना बुरा नहीं लग रहा। कितने लंबे अरसे बाद हम लोग इस तरह अकेले मिले हैं।
4: हाँ, बच्चों की हत्या करने के बाद तो जैसे तूफान ही आ गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी उस धूर्त से कर दी थी और मैं निराश होकर शहर छोड़कर चला गया था।
0: अजीब लग

0: होता है इतने दिनों के बाद मिलकर।
1: थोड़े दिनों में फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पराया पराया।
2: फोन। तुम सुनो।
1: ये चिकने अकेले कमरे में टेलीफोन कहाँ होगा?
0: ऐसी घंटी टेलीफोन ही की होती है।
2: देख लो ना, शायद गिटार के अंदर है। कितनी जबरदस्त आवाज गूंज रही है।
3: हेलो हेलो
4: हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैं कौन हूँ? आपने पहचाना? अच्छा बताइए, मैं कौन बोल रही हूँ? आप जानती हैं, आपके कुछ शब्द पंख फड़फड़ाते हुए मेरे पास आए थे। मम्मी, आपके शब्द मैं सहेज कर रखना चाहती थी।
1: मम्मी, तुम हो कौन? तुम मुझे मम्मी कह रही हो? कहीं तुम...
4: आपने ठीक समझा मम्मी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था। मैंने खुद अपना नाम रख लिया, कुमी, यानी चिर सुंदर। अच्छा है।
1: हेलो हेलो, एक मिनट ठहरो। सुनो जी,
2: क्या है? कौन है फोन पर?
1: वही लड़की है, मैं पहचान गई। उसने अपना नाम कुमी रखा है।
2: लाओ फोन मुझे दो। हेलो हेलो, हाँ, क्या तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बेटी हो? वैसे मैं बता दूं, मेरी कानूनी संतान कोई नहीं है।
4: माफ करिए डैडी, कानूनी संतान क्या होती है? मुझे मेरे भाई के साथ जन्म लेते ही मार दिया गया था ना? मुझे याद है, आपने मुझे एक प्लास्टिक की थैली में बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। मम्मी, मैं सर्द हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है।
2: सुनो कुमी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तो तुम बड़ी हो गई होगी।
4: बहुत दुबली हूँ डैडी, पिरामिड में बंद लाश की तरह मैंने एक मोमजामा पहन रखा है।
2: कुमी, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हें पता है, क्या तुम उससे मिलोगी?
4: काश मैं हिल भी पाती। मैं बाहर नहीं आ सकती ना। अब तो यही एक रास्ता है कि आप लोग यहाँ आ जाएं।
1: क्या?
2: लेकिन कुमी, इस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है।
4: वहाँ कमरे में एक गिटार है ना?
2: हाँ है, तो फर्श पर रखा है। इसी के अंदर तो टेलीफोन है।
4: उसी टेलीफोन के तार को खूब जोर से खींचिए, ठीक गिटार के आकार का ही एक रास्ता फर्श में खुल जाएगा। उस रास्ते से नीचे अंधेरी सीढ़ियां चली गई हैं। एक बार में सिर्फ एक ही सीढ़ी उतरें और टेलीफोन के तार के सहारे चलते जाएं। आखिर में अंधेरे में आपको एक सफेद दरवाजा मिलेगा। वही कुमी के कमरे का दरवाजा है। ये दरवाजा भी सिर्फ बाहर से खुलता है।
0: ठीक है, मैं समझ गया। लो, इस तार को खींचने में मदद तो करो जरा। ओह, इन सीढ़ियों पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है मैं नींद में चल रहा हूं।
4: आओ मम्मी।
1: तुम कुमी हो?
4: हाँ, मैं कुमी हूँ। हूँ ना डैडी?
2: तुम ही हमारा बच्चों में से एक लगती हो जिन्होंने हमें यहाँ फंसाया है।
1: देखो जी, अब तुम चुप रहो। तुम ये गोल वाला कमरा नहीं, रेफ्रिजरेटर है। कुमी बेटे, मुझे अफसोस है बेटे, हमें माफ कर सकोगी?
2: मेरा दिल फिर धड़कने लगा है, लग रहा है कि मैं घूम रहा है।
4: आप लोग ठीक से सोए नहीं हैं शायद।
1: नींद आती कहाँ है, अक्सर तुम दोनों की तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती है, घूमती रहती है।
4: अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं सोच कर देखिए।
1: क्या सोचूं, क्या सोचूं?
2: कुमी, हमें यहाँ से बाहर निकाल लो ना। देखो कुमी, देखो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। हम तो यही सोच कर आए थे, हमारी प्यारी कुमी हमारी मदद जरूर करेगी।
4: मम्मी से पूछिए, अभी और कितने बच्चों की हत्या करनी है।
2: तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो कुमी? हमने जो कुछ किया था मजबूरी में किया था। कुमी, कुमी मेरी बात तो सुनो।
3: हेलो कुमी, कुमी सब ठीक चल रहा है वहाँ?
4: बेहद घिसे-पिटे जवाब है इनके पास।
3: अरे तो गोली मारो, तुम बाहर आ जाओ।
4: ये मम्मी डैडी का क्या करें?
3: उन्हें छोड़ दो, अभी ये कमरा इतनी तेजी से घूमेगा तो उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा।
4: ठीक है, अलविदा मम्मी, अलविदा डैडी।

0: नहीं, वो मर गए या जिंदा है?
1: कौन?
0: मम्मी और डैडी।
1: इतनी आसानी से तो नहीं मरे होंगे।
0: हाँ, हमें उन्होंने कितनी आसानी से मार दिया था। हमारे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था।
1: हम अब कहाँ जाएंगे?
0: किसी और मम्मी डैडी की तलाश में।
1: किसी और की?
0: हाँ, उनकी तलाश में जिनके डर से मम्मी और डैडी ने हमें जान से मार दिया था।
1: वो कहाँ मिलेंगे?
0: वो हर कहीं, हर जगह। उनकी पहली उंगली बड़ी फुर्तीली होती है, बड़ी जल्दी उठती है। वो पापी है, वो कलंकिनी है, वो अवैध है। कितनी फुर्ती से उनकी तर्जनी उठती है।
1: ठीक है, हम ऐसी ही फुर्तीली तर्जनी वाले लोगों को खोजेंगे।
0: आओ चलें।
1: चलो।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम का सबसे पहला गाना सुनिए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से, उदित नारायण की आवाज में। संगीत है जतिन ललित का और गीत को लिखा जावेद अख्तर साहब ने।

श्रोताओ, अब आप गीत सुनने जा रहे हैं आराधना फिल्म का, किशोर कुमार की आवाज में। संगीत है एसडी बर्मन का और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: मुकेश और वैजयंती माला की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी संगम।
1: मेरे एक तपस्या है।

सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म का अभी आपने गीत सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। चलिए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म है डार्क द फायर, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक, संगीत राजीव।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें आप सुन रहे थे। राजेश रोशन का संगीत था और गीतकार थे समीर। फिल्म थी दाग द फायर। अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में, मोहम्मद सलामत के साथ इनकी आवाज़ है। इस्माइल दरबार का संगीत है और गीतकार है महबूब। फिल्म है हम दिल दे चुके सनम।

हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर के गायनक में। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
2: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
1: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
3: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
1: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादौर गोरखपुर में वाक़ ये बैनुल अक़वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुइया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक्कदा मुश्तरक डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक्कदा एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी एआई पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में एआई की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर

0: थर्ड ओर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदाम को मजबूत बनाना है। ये दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत।
2: नमस्कार, नारी जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं मेनका। बहनों, हमारे कार्यक्रम में बातें होती हैं महिलाओं की शक्ति की, उनके सपनों की और समाज में उनकी अहम भूमिका की, और इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई गई योजना के संबंध में भी हम बात करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे बातें अपने बच्चों की भी, क्योंकि इनसे है हमारी दुनिया और ये हमारे घर की जान होते हैं। हम सब की जान आजकल घर में तूफान मचाए हुए हैं, क्योंकि बहनों गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और छुट्टियां शुरू होते ही शुरू हो जाती है बच्चों की मस्ती। पूरे घर में धमा चौकड़ी, कभी फ़ोन की ज़िद, कभी टीवी की ज़िद, और अगर कुछ नहीं मिला तो घर में कुछ तोड़फोड़। बहनों, आपके घर की हालत भी यही हो रही होगी अगर घर में छोटे बच्चे हैं। ऐसे में हम माँ की सोच यही होती है कि इन नन्हे शैतानों को किस तरह से व्यस्त रखा जाए। तो इसका एक ही उपाय है और वो है समर क्लास। बहनों, समर क्लास सिर्फ व्यस्त ही नहीं रखता बल्कि उन्हें नई नई चीज़ें सीखने का मौका भी देती है। समर क्लास में बच्चे ड्राइंग, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और क्राफ्ट जैसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो उन्हें कराई जाती हैं। इसके साथ साथ उनमें छिपी प्रतिभाएं भी सामने आती हैं। बहनों, अगर आप समर क्लास में बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप उन्हें स्क्रीन से भी दूर रख सकते हैं, उन्हें एक्टिव रख सकते हैं, और ये समर क्लास बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों से उनको मिलने का मौका भी मिलता है, जिससे कि वो दोस्ती सीखते हैं, आपस में चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, और एक टीम वर्क की भावना जो होती है वो बच्चों के अंदर डेवलप होती है। और बहनों, बहुत से समर कैंप ऐसे भी होते हैं जहां पर खेल कूद के साथ साथ उन्हें योग भी कराया जाता है और बहुत सी आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिससे कि बच्चे फिट रहते हैं और तंदुरुस्त बने रहते हैं। इसलिए इस गर्मी की छुट्टी में बच्चे कुछ नया सीखें और उनका समय अच्छे तरीके से बीते, इसलिए अपने बच्चे को समर कैंप में आप ज़रूर भेजिए। पर भेजने के पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है अगर आप समर कैंप में बच्चे का एडमिशन कराना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वो डांस करना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है, या फिर किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहता है, पेंटिंग करने में उसका इंटरेस्ट है, तो अगर वो चीज़ उस कैंप में सिखाई जा रही है तो आप वहाँ पर एडमिशन करा सकती हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि समर कैंप का माहौल जो है वो सुरक्षित हो, और जो चीज़ वो सीख रहा है और जिससे सीख रहा है वो प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, वहाँ का स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए। और बहनों, आपको ध्यान रखना होगा कि समर कैंप में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, उनका क्या शेड्यूल है और बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप पहले से जान लीजिए। क्या फ़ीस लगेगी, एक्स्ट्रा क्या खर्चा आएगा, जैसे कि अगर बच्चे पेंटिंग करते हैं, कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं तो सामान कौन देगा, आपको ख़रीदना होगा या फिर कैंप से ही मिलेंगी ये सारी चीज़ें, ये चीज़ आपको पता करनी होगी। और अगर बच्चा जाना चाहता है तभी आप उसका एडमिशन कराइए। किसी भी तरह का अपने बच्चे पर दबाव मत डालिए, क्योंकि बच्चा, हर बच्चा बहुत खास होता है, बस ज़रूरत होती है उसे सही मंच और सही प्रोत्साहन मिलने की। एक चीज़ और बहनों आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपको कैंप घर के बहुत दूर का आपको नहीं चुनना है, जिससे कि आने जाने में परेशानी ना हो। आसपास अगर कहीं कुछ सिखाया जा रहा हो तो आप वहाँ पर बच्चे का एडमिशन करा सकती हैं, क्योंकि समर कैंप सीखने और बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने और अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण का बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। और इन गर्मी की छुट्टियों में उनकी शैतानी थोड़ी कम हो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहे, इसलिए अपने बच्चे का समर कैंप में एडमिशन ज़रूर कराइए। तो ये तो बातें हुई कैंप के बारे में, और अब अपनी बातों को हम यहाँ पर रोकते हैं और रुख करते हैं संगीत की उस दुनिया की ओर, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं गांव की मिट्टी की सोंधी महक, बैलगाड़ी की छनछन और पीपल की ठंडी ठंडी छांव, और दिल को छू लेने वाले पुराने गीतों की मिठास। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

बहनों, तीसरी कसम का ये गीत हम उम्मीद करते हैं कि सच और सादगी का संदेश देता ये सदाबहार गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहनों, पुराने गीतों की खासियत ही यही होती थी कि कम शब्दों में ज़िंदगी की बड़ी बात ये कह जाते थे, और यही वजह है कि ये गीत हम सभी के दिल के बेहद करीब महसूस होता है। तो चलिए अब हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो चला है सरकार द्वारा चलाई गई योजना के संबंध में बात करने का। इस क्रम में आज हम बात करेंगे महिला शक्ति केंद्र योजना के बारे में। बहनों, ये एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है, वो है महिला शक्ति केंद्र योजना। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हम कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना हो या फिर नेतृत्व करना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, या यूं कहें कि उन्हें अवसर भी नहीं मिल पाता है और कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो आज भी पीछे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत की है। बहनों, इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत गांव-गांव में महिला शक्ति केंद्र बनाए जाते हैं, जहां पर महिलाओं को उनके अधिकार के संबंध में बताया जाता है और उनके फायदे के लिए सरकार जो भी सरकारी योजनाएं चला रही है उनकी जानकारी दी जाती है, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, उनकी शिक्षा और उनके रोज़गार से जुड़ी तमाम जानकारियां महिलाओं को दी जाती हैं। बहनों, ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके ज़रिए उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, या अगर वो कोई चीज़ सीखी हुई हैं और उसको और बारीकी से सीखना चाहती हैं या किसी काम में निपुण होना चाहती हैं तो वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और किसी भी काम में निपुण हो सकती हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे कि महिलाएं तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बहनों, ये योजना हमें ये सिखाती है कि अगर महिलाओं को सही दिशा मिले, उन्हें अवसर मिले, तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। तो हम सब मिलकर इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहनों, अगर आप भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहती हैं या किसी भी काम में निपुण होना चाहती हैं तो पास के महिला शक्ति केंद्र में जा करके आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो बहनों, ये तो हुई सरकार द्वारा चलाई गई योजना महिला शक्ति केंद्र के संबंध में जानकारी, और अब इसी खूबसूरत सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। बहनों, इस गीत में बड़े ही सरल और प्यारे अंदाज में ये एहसास कराया गया है कि जब रिश्तों में अपनापन हो तो घर भी मंदिर सा लगता है, और किसी अपने के आने से ज़िंदगी में कैसे बहार आ जाती है। गांव की सादगी, मन की मिठास और प्यार की खुशबू से सजा ये खूबसूरत गीत आपके दिल को छू लेगा।

बहनों, कितना प्यारा, कितना ही सरल और दिल को छू लेने वाला ये गीत हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अब हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर हमारे घर में नवजात शिशु है तो हम उसकी देखभाल किस तरह से करें। बहनों, माँ बनना जितना सुखद एहसास है उससे भी बड़ी ये जिम्मेदारी होती है, खासकर बात जब नवजात शिशु की हो तो हमें हर छोटी से छोटी बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और हर मौसम उसके लिए नया होता है और मौसम का बदलाव वो झेल नहीं पाता है। जैसे कि अभी देखिए गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और इस गर्मी के मौसम में बहुत ही संवेदनशील होते हैं ये बच्चे। इस मौसम में उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। ये मौसम नवजात शिशु के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है तो उसका खास ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के कपड़े का चुनाव बहुत ध्यान से रखना होगा। बहनों, ध्यान रखिए कि आप जो भी एक

कपड़े बच्चे को पहनाते हैं वो कपड़े हल्के हों, ढीले हों और कॉटन के हों। इस तरह के कपड़े बच्चे के लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं और आपको बहुत सी महिलाओं को हम देखते हैं कि बच्चों को 2-3 कपड़े पहना देती हैं इस गर्मी के मौसम में भी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं, इससे बच्चा असहज महसूस करता है और उसे पसीना भी आ सकता है। तो कपड़े आपके हल्के हों, ढीले हों, कॉटन के हों और मौसम के हिसाब से हों। इसके साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी की कमी इन गर्मी के दिनों में ना होने पाए। अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो माँ का दूध बहनों बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। गर्मी के दिनों में बार बार उसे स्तनपान कराएं और अगर 6 महीने से बड़ा है बच्चा तो आप उसे पतला दाल का पानी दे सकती हैं, पत्ती खिचड़ी दे सकती हैं, दलिया दे सकती हैं। इसके साथ ही साथ पानी पिलाना चाहिए, जिससे कोशिश करिए कि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना होने पाए। और बहनों इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चा जिस कमरे में भी रहता है वो कमरा हवादार हो, ठंडा हो, और अगर आप कूलर या एसी यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी हवा सीधे बच्चे पर ना लगे। और कोशिश कीजिए कि जब धूप अपने चरम पर हो यानी दोपहर के समय अपने नवजात शिशु को बाहर ले जाने से बचें। इसके साथ ही साथ साफ़ सफाई की भी बहुत ज़रूरत होती है। रोज़ आपको अपने बच्चे को नॉर्मल पानी से नहलाना है और उसकी स्किन को साफ़ और सूखा रखने की कोशिश कीजिए ताकि किसी भी प्रकार के दाने या संक्रमण उसे ना होने पाएं। बहनों माँ की ममता और सही देखभाल ही एक नन्ही जिंदगी को सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल रख सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुस्त है, दूध कम पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, उसे बुखार है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बहनों माँ बनना जितना सुखद एहसास है उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को थोड़ी सी सावधानी से निभाइएगा तो आपका बच्चा भी हंसता खेलता और स्वस्थ रहेगा। तो अब हम फिर चलते हैं गीतों और सुरों की दुनिया में, एक बार फिर हम कदम रखते हैं। बहनों अगला गीत मैंने लिया है यशुदास की आवाज़ में, बड़ा ही प्यारा सा नगमा है। इसमें गाँव का जिक्र किया गया है, गांव जहां पर सुबह चिड़ियों के चहचहाने से होती है और शाम चौपाल की रौनक में ढल जाती है। वो गांव जिसे इंसान छोड़ तो देता है लेकिन दिल से कभी दूर नहीं कर पाता। अपनी मिट्टी की सौंधी महक और अपनापन समेटे हुए ये गीत आज भी लोगों के दिल को छू जाता है। आप भी इस गीत का आनंद लीजिए।

मैंने अभी आपने फिल्म चित चोर का ये गीत सुना, आवाज़ थी यशोदास जी की। मैंने पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते थे, ये हमारी यादें, हमारी मिट्टी और हमारे संस्कारों की आवाज़ होते थे। और जब कहीं भी ये गीत बजते हैं तो हम सब इनके साथ ज़रूर गुनगुनाते हैं। और अब देखिए घड़ी की सुई इशारा कर रही है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। लेकिन आप कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे बहनों कि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हमें अपने ऊपर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि 24 घंटे का समय होता है, इसमें एक घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। उस एक घंटे में आप अपनी पसंद का कोई काम करिए, लेकिन जो काम आपको सुकून देता है, चाहे वो पेंटिंग कर सकती हैं, आप गाना गा सकती हैं, कविता लिख सकती हैं, कहानी लिख सकती हैं, लेकिन 24 घंटे में एक घंटा अपने लिए ज़रूर दीजिए। देखिए ये समय आपका अपना होगा और आपको कितना सुकून देगा। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी सुरेले गीतों के साथ और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई आज सुनिए, बकरी पालन से अधिक आय कैसे हो। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह।
1: हमारे किसान भाई जानते हैं, इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने खेती बाड़ी पशुपालन से कैसे अधिक से अधिक आय प्राप्त करें। आप लोग सभी जानते हैं कि पशुपालन में ऐसे बहुत सारे उद्यम हैं जिसे आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डेयरी है, मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, इस तरह से तमाम उद्यम है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो बकरी पालन है, बकरी पालन से हम अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे बकरी पालन छोटी छोटी स्केलों पे बहुत हमारे किसान भाई पाल रखे हैं, किसी के पास दो बकरियां हैं, किसी के पास चार बकरियां हैं, लेकिन हम इससे अधिक लाभ प्राप्त करना है तो हमको एक उद्यम के रूप में इसको अपनाना पड़ेगा। और जो लोग पाल रहे हैं वो भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हमको समझना होगा कि हम कौन कौन से कारकों पे ध्यान दें जिससे कि हमारा लाभ का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीजें आती हैं। अक्सर जो लोग हमारे किसान भाई पशुपालक भाई इसको पाल रहे हैं तो देख रहे होंगे कि जो नस्ल हैं उनका कोई उसकी पहचान नहीं होती है, लोकल नस्लें हैं, स्थानीय नस्लें हैं जिनकी बढ़वार बहुत कम होती है। तो हमको दो कारकों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। एक तो हमको ऐसी नस्लों को रखना होगा जिनका कम समय में अधिक से अधिक बढ़वार हो, ग्रोथ हो, उनका उत्पादन अच्छा हो। तो हम आपको कुछ नस्लों के बारे में बताएंगे जो आपको अगर इनको रखते हैं तो आपको उन्हीं चारा दाना उन्हीं व्यवस्थाओं में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहली नस्ल आती है बर्बरी। बर्बरी की आप खासियत जान लें कि बर्बरी एक ऐसी नस्ल है जिसको आप अगर चराने, जैसे कि हमारे यहाँ चारागाह की जमीनें भी कम हो गई है, तो अगर आप बर्बरी रखते हैं तो बर्बरी को अगर चराने नहीं ले जाते हैं तब भी उसकी वृद्धि प्रभावित नहीं होती है। और इसको माना जाता है कि स्टॉल फीडिंग के लिए या घर पे रख करके खिलाने के लिए बहुत अच्छा, इसका तब भी विकास और वृद्धि इसकी होती रहती है। दूसरी नस्ल है सिरोही। अगर आपको बर्बरी नहीं मिल पाती है तो आप सिरोही नस्ल को पालें। सिरोही भी इसकी भी बढ़वार अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी है। और बर्बरी की जहां तक बात है, ये दूध उत्पादन भी लगभग 1.5 से 2 लीटर दूध प्रतिदिन आपको दे देती है। साथ ही इसका जो कीडिंग रेट है, मतलब जो बच्चा पैदा करने का दर, उसको 1.5 माना जाता है, मतलब 1.5 बच्चे का औसत आता है एक वर्ष में। और ये साल भर में 2 बार बच्चे दे देती है। इसका गर्भकाल 150 दिन का होता है। तो ये सब खूबियों को देखते हुए आप बर्बरी और नहीं तो फिर सिरोही, तो सिरोही भी लगभग अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। हमारे जो भी रिपोर्ट आए हैं शोध संस्थानों से आए हैं कि इसको अगर पालते हैं तो अच्छा रहता है। तीसरी नस्ल एक है ब्लैक बंगाल। खासतौर से जो बिहार बंगाल की एरिया होती है तो यहाँ पे देखेंगे कि लोग ब्लैक बंगाल को भी काफी पालते हैं और उससे कम समय में ही अच्छा उसका वृद्धि विकास हो जाता है। तो आपको उसी चारे दाने व्यवस्था में आपको अगर ये नस्ल रख लेते हैं, अब नस्ल लाने का रखने का क्या तरीका हो सकता है, अब दो तरीका है। या तो आप खरीद करके, जैसे जो उसका ओरिजिन प्लेस है, जहां उत्पत्ति स्थल है, जैसे बर्बरी आप एटा इटावा साइड में जाएंगे तो वहां से आप ला सकते हैं, सिरोही है पंजाब है उधर से ला सकते हैं, ब्लैक बंगाल आप पश्चिम बंगाल की तरफ बिहार की तरफ जाएंगे तो इसमें आपकी लागत बढ़ेगी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसमें आप एक मेल रख लीजिए अपने झुंड में और क्रॉस कराते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका झुंड जो है वो उसी नस्ल में, अगर आपने मान लीजिए ब्लैक बंगाल रख लिया है तो ब्लैक बंगाल में बर्बरी रख लिया तो बर्बरी में झुंड धीरे धीरे 2-4 वर्षों में परिवर्तित हो जाएगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि नर 2 साल हो जाए तो उसको फिर बदल दें, उसी नस्ल का दूसरा नर लाएं, क्योंकि फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की एक समस्या आती है तो इससे आपको बचत होगी। दूसरा थोड़ा इसमें देखा जाता है कि लोग खान पान पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं जिससे कि उसकी आमदनी नहीं होती है, उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है। आप अच्छी से अच्छी नस्ल रख लें यदि आप व्यवस्था नहीं देते हैं उसमें, खास तौर से आहार की बात, तो आहार में हम कहेंगे सस्ता कैसे हम आहार को बनाएं, तो इसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो आप हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, वर्ष भर के लिए करें। उसमें सबसे अच्छी सहजन आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी इसकी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो छोटे छोटे होते हैं और वर्ष भर इसमें फूल पत्ती फल सब आते रहते हैं, और सारा इसका उत्पाद अगर आप उस फार्म में इसको बकरियों को खिलाते हैं तो काफी हद तक एक पौष्टिक चारा हो जाता है हमारे बकरियों के लिए। इसके अलावा आप सू बबूल है, बहुत सारी और इस तरह की जंगल जलेबी है, इस तरह के जो है आप अपने खेत के आसपास लगा रहे हैं तो हरे चारे का प्रबंधन तो जरूर अपने बकरियों के लिए करें। साथ ही दाना आपको देना होगा, दाना आप खुद घर पे बनाएं तो अच्छा है। कभी कभी हमारे जो पशुपालक भाई हैं ये सोचते हैं कि हम दाना नहीं दें केवल चराने से काम हो जाए, तो इसमें क्या है कि उसकी वृद्धि उतना अच्छा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो दाना बनाने देने का तरीका भी एक अलग होता है। जैसे अगर आप जब आप दाना बनाएं तो मान लीजिए एक कुंटल दाना आपको बनाना है तो उसमें 48 kg मक्का होना चाहिए, 20 kg खली होनी चाहिए, 22 kg चोकर होना चाहिए, 7 kg उसमें जो गुड़ आता है सिरा इसका मोटा जो रूप होता है इसको आपको उसमें मिला देंगे तो एक इंस्टेंट एनर्जी एक तत्काल ऊर्जा बकरियों को आपको मिलेगा। तो इस तरह से करके साथ ही उसमें 2 kg खड़िया, 1 kg नमक और 1 kg किसी अच्छे मिनरल मिक्सचर को जिसका आपको लगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इसको मिला करके 1 क्विंटल में ये सब रख करके इसको अच्छे से ग्राइंडिंग करवा दें। और कितना देना है बकरियों को, आपको लगभग 200 से 250 ग्राम पर डे देना होगा और जो बकरे हैं उनको 400 से 500 ग्राम तक। ये तो आपको जब इस तरह से आप देंगे तो आप देखेंगे कि आगे चल करके हरे चारे के साथ साथ जो व्यवस्था देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको कम समय में ही आपके ये बकरियां बकरे तैयार हो जाएंगे। साथ ही एक चीज और हम कहेंगे, स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए अक्सर जब हमारी बकरियां बीमार हो जाती हैं तो हमारे पशुपालक भाई डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, उसका इलाज कराते हैं तो उसमें काफी लागत आ जाती है, आपका मुनाफा कम हो जाएगा। तो इस मुनाफे को कमाने के लिए आपको चाहिए कि अपने झुंड का वैक्सीनेशन जरूर करा लें। और वैक्सीनेशन में हालांकि इसमें भी गलाघोटू होता है, खुरपका मुंहपका होता है, तो ये बीमारियां तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं और इसके तो फ्री में टीके आपके पशु चिकित्सालय पे उपलब्ध ही होते हैं। लेकिन बकरियों की एक खास बीमारी होती है जिसका नाम है PPR। ये बीमारी अक्सर पूरे झुंड को झुंड समाप्त कर देती है। तो PPR का आप वैक्सीनेशन अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने पूरे झुंड का करा लें। और इंट्रोटॉक्सिमिया एक और बीमारी होती है जो कि इससे भी कभी कभी देखा जाता है कि हमारे जो बकरियों का झुंड है प्रभावित होते हैं, तो इससे भी आप करके आप इसका वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही जैसा हमने बताया कि हरे चारे दाने की व्यवस्था और नस्ल, क्योंकि नस्ल पे आपको अगर नहीं ध्यान देंगे तो स्थानीय नस्लों का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप चारा दाना सारी चीजें देंगे लेकिन उसकी वृद्धि उस तरीके से नहीं होगी, वेट नहीं गेन करेगा, तो आपको जो उसका लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम आपको जैसे बताए हैं कि इन इन बातों पे ध्यान में रख करके यदि आप उनकी नस्लों को रखते हैं, आहार का प्रबंधन करते हैं, साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमने जो बताया वैक्सीनेशन का उसको कराएं और साथ ही साथ कृमिनाशक औषधि का भी प्रयोग कराया करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ कृमियां भी प्रभावित करती हैं, जैसे राउंड वर्म है, लंग वर्म्स है, इस तरह के वर्म्स भी उसको प्रभावित करते हैं, बाह्य परजीवियां भी होती हैं। तो इसका भी ध्यान हमारे पशुपालक भाई जो बकरी पालक हैं खासतौर से ये लोग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बाह्य परजीवी अगर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट की रहेगी तो उन बकरियों के खून को चूस लेती हैं जो आपके पोषक तत्वों से ही उनको तैयार होता है, तो इस तरह से वो अपने वृद्धि विकास उनका शरीर भार न बढ़ के वो उसी रक्त को मात्रा को ही संतुलित करने में उसका व्यय हो जाता है। तो इसलिए आपको बाह्य परजीवियों से बचाव करने के लिए एक गोता तालाब बनवाना चाहिए। गोता तालाब एक तरह का गड्ढा होता है जिसमें लगभग 1 मीटर गहराई तक रहेगा, उसका स्लोप दिया जाता है, उसमें पानी भर लेते हैं और जितना पानी आता है उसी का 1% 2%, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं, ब्यूटाक्स है, टिकाउट है, इस तरह की दवाओं को लेकर के उसमें मिला करके और उसी रास्ते से अपने बकरियों को गुजारें। एक बार लगभग दो महीने में इसको कर लेते हैं तो ये जो बाह्य परजीवियों से आपका प्रकोप कम रहेगा, साथ ही अंतः परजीवियों के लिए जैसा हमने बताया कि अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके ही दें। तो इस तरह से जैसे हम सारी चीजों को जो बताए हैं अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे वार्ता। विषय था बकरी पालन से अधिक आय कैसे। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे आप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
6: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
7: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

0: सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आंब, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर।
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं।
2: अच्छा,
3: गाया मैंने
2: जी। मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: हाँ, अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ,
3: हाँ। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
2: हाँ।
3: तो आपके गले में नहीं आई।
2: हाँ।
3: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, हाँ। ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
2: हाँ।
3: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
2: हाँ।
3: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो
2: जी।
3: पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय काली पास सुर है तो,
2: हाँ,
3: खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ,
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
2: हाँ।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू तो घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी,
3: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
2: जी, जी। अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो?

0: पे या आशा जी का शो है
1: नहीं
0: या
1: नहीं
0: लता
1: वो
0: दीदी,
1: तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ
1: वो
0: नहीं?
1: दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के
0: हाँ,
1: लिए। हाँ,
0: अरे वाह, ये कौन सी
1: मराठी
0: फिल्म?
1: फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी
1: और फिल्म का नाम था बायानो नवरे संभाला।
0: ओ
1: उसमें
0: हाँ
1: डांस की जुगलबंदी थी,
0: हाँ
1: जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई। दोनों के गाय, एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने
0: अच्छा
1: गाया।
0: अच्छा
1: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो। और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई,
0: अच्छा
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: मेरा ट्रैक
1: तो मैं
0: रिकॉर्डिंग शुरू
1: बहुत
0: हो चुका
1: ये
0: था।
1: दबती थी। हाँ,
0: जी
1: ट्रैक
0: जी
1: रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था
0: जी
1: शशांक लालचंद
0: जी
1: तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ
0: हाँ
1: हमारा। तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग गाया,
0: अच्छा
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में है अपने हिसाब से। तो
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और
0: अच्छा
1: कुछ करने का नहीं। मतलब अच्छा, वो आप किस हुकुम।
0: हाँ हाँ
1: मैंने,
0: हाँ
1: आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ
0: जी
1: माय
0: जी
1: गॉड।
0: जी
1: वो गाना था, वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
0: अच्छा,
1: उनका।
0: आशा जी की बात निकली है तो वो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का
0: जी जी
1: गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी
0: हाँ,
1: आपने जीने न
0: प्राण
1: दिया।
0: जाए पर वचन
1: हाँ,
0: जाए,
1: प्राण
0: और
1: जी
0: नय्यर साहब का
1: नय्यर
0: कंपोजिशन,
1: साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी
0: हाँ,
1: होगी लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
0: ये गाना सुन लिया जाए।

0: निर्मला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अंबा वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो बस उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया,
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: था,
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा
1: है, ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ, मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
0: जी, जी।
1: एक साल लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हा करके सांप के सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद एक रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ का गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता।
1: पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक डुगाना है, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको, रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: गया फिर जानी विस्की अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जानी भाई आप तो लगे पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी जी
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी।
0: जी जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी।
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मेरे शो को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी है,
0: क्या बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल,
1: है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
1: प्रेजेंटेशन
0: हो
1: शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है, क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी होते
0: जी,
1: थे,
0: कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी,
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल
0: जी,
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कांटेक्ट
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: मुझे।

0: थे।
1: अच्छा
0: हाँ, अभी
1: अच्छा
0: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए, नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ समझ में आ
0: ऐसा चिल्लाते थे जरा
1: जी
0: भी।
1: जी
0: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाना,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा
1: जी
0: सा धुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है,
1: बिल्कुल
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं के
0: वे
1: साथ।

0: हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
1: मिलता
0: में,
1: नहीं है, सही बात।
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल,
0: हाँ
1: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिसका से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो जाएगा
0: जी।
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा जी। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
0: जी,
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी,
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है।
0: अच्छा।
1: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको शो को।
0: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके,
0: विनय मांडके,
1: विनय मांडके
0: जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
1: जी जी
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, हाँ बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया मजा आ
0: गया।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था हाथ में कंगन कान में बाली तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना
1: जी,
0: था
1: जी, जी.
0: उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी जी
0: था,
1: जी
0: अच्छा लगा.
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें,
0: जी
1: उनकी बात करते हैं. कभी उन्हें लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पाड़वा के शो में,
1: ओहो
0: वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान, और जो कुछ
1: जी
0: विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए. वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी,
1: जी
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी प्रभु
1: हाँ
0: कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली.
1: बिल्कुल
0: सामने दर्शन हुआ साक्षात. तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये. तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी
1: हाँ
0: गुढीपाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: नहीं आई.
1: अच्छा
0: फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं,
1: ओहो
0: कसं करता? म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है,
1: हाँ हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाता है. मतलब उसने उसके पास वो नोन थी
1: हाँ
0: कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं,
1: हाँ
0: पूरा मालूम थी
1: मालूम था
0: उनको.
1: उनको. क्या बात. अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता
0: जी
1: जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने
0: जी
1: अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी हाँ
1: हैं.
0: जी
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगी?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी।
1: हाँ हाँ।
0: या उसका शो में शामिल होना बहुत ही
1: जरूरी था। हाँ। मस्ट।
0: हाँ। हाँ।
1: और भी
0: तो एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन।

0: pawna pawna pawna zara thamba ho pawna zara thamba arghe padala piklai amba alavai padala piklai am ho nitvag padala piklai amba कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ाल पिला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या

0: कर रहे हो आप? अंबा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अंबा
1: जी
0: आता था सामने
1: क्या
0: से,
1: बात
0: मजा आता था उनको भी थोड़ा सा, हमने भी कुछ किया
1: वाह वाह वाह
0: उनको भी शायद।
1: जी प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें
0: हाँ
1: जरूर
0: जी
1: सुनाया करती
0: गाती
1: थी
0: थी हाँ,
1: और अपनी
0: तो
1: लिस्ट
0: एक
1: में जरूर।
0: कन्नड़ा गाना थोड़ा
1: हाँ
0: सुनाती हूँ,
1: जी जी जरूर
0: मेरी
1: जरूर
0: लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया, अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या।
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: ये गाना बहुत उधर था। और उधर गुजरात की एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर। इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी,
1: होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए,
1: हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा,
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों को
1: वाह वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव
0: हाँ
1: सुनकर
0: जी,
1: के।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूं जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
2: रंगमंच में।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से

0: गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो स्केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसे लेकर आ रहे हैं मनोज यादव।
3: युवा दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों जहां मिलते हैं वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है। दोस्तों ये कथन है महर्षि अरविंद जी का। महर्षि अरविंद जी ने जीवन को संतुलित बनाने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जीवन को संतुलित बनाना चाहिए, कर्म यानी कार्य, ज्ञान यानी बुद्धि और भक्ति यानी भावना का समन्वय ही पूर्ण सफलता लाता है। दोस्तों इस सुविचार पर आप भी अमल कीजिए। इस सुविचार के बाद लीजिए सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम में हम वापस लौटते हैं। दोस्तों अब हम बातें करेंगे अग्निपथ योजना की, एक ऐसी योजना जो देशभक्त युवाओं को भारतीय सेना में सेवा देने का मौका देती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे 10वीं 12वीं पास युवा अग्निवीर बनकर राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। दोस्तों अग्निपथ योजना 2022 में शुरू हुई, इसका मकसद सेना को युवा और चुस्त रखना है। 17.5 साल से लेकर 23 साल के अविवाहित युवा लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। भर्ती आर्मी नेवी एयरफोर्स में होती है। 4 साल की छोटी लेकिन गहन सेवा, 25% मेरिट वाले स्थायी कमीशन पा सकते हैं, बाकी को कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स मिलेंगे ताकि सिविलियन जॉब्स में आसानी हो। दोस्तों जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, अग्निपथ वो जज्बा जगाता है। इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को हथियार चलाना, लीडरशिप स्किल्स जैसे अनेक गुणों को सिखाया जाता है। अग्निवीर बनने के लिए आपको न्यूनतम 10वीं में 45% या 12वीं में 50% अंक प्राप्त होने अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट जैसे रनिंग, पुशअप और अन्य प्रक्रिया जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परीक्षा या मेडिकल देकर आप एक अग्निवीर के रूप में चयनित होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस योजना के तहत भारतीय सेना यानी नेवी आर्मी या एयरफोर्स में अपनी सेवा देनी है तो आप जरूर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और एक अग्निवीर के रूप में अपने देश की सेवा करें।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बातें करते हैं एक ऐसी योजना जिसे कहते हैं मेरा युवा भारत, यानी माय भारत स्कीम। यह भारत सरकार की वो पहल है जो 15 से 35 साल के युवाओं को स्वयं सेवा, स्किल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है। दोस्तों, आइए जानें कैसे यह योजना आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, मेरा युवा भारत पोर्टल और ऐप के जरिए युवाओं को वॉलेंटियरिंग के लाखों अवसर देता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, करियर गाइडेंस, हर क्षेत्र में भाग लें। 14.5 लाख से ज़्यादा वॉलेंटियर पहले ही जुड़ चुके हैं इस योजना के तहत। ये योजना स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ इवेंट्स और सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है, जो नौकरी या स्टार्टअप में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, इस योजनाओं के तहत कई युवा वॉलेंटियरों ने गंगा सफाई, स्वास्थ्य या हेल्थ कैंप्स में हिस्सा लेकर देश सेवा की। दोस्तों, इस योजना के तहत 100 से भी अधिक थीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल कोर्सेज के अंतर्गत फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स के जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट, नेशनल यूथ कार्ड, 75% युवा प्लेसमेंट पाते हैं। योग्यता सरल है, 15 से 35 साल का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, आप भी myBharat.gov.in या MyBharat ऐप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में। और दोस्तों, आप इस योजना के तहत अपने राज्य में या अपने शहर में हो रहे इवेंट्स में भाग ले सकते हैं और वॉलेंटियरिंग के माध्यम से उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपना योगदान देश सेवा में दें। इस चर्चा के बाद दोस्तों, लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, क्या आपको भाषाओं की दुनिया आकर्षित करती है? अगर हाँ, तो अनुवाद का क्षेत्र आपके लिए सुनहरा करियर हो सकता है। आज के वैश्विक युग में जहाँ हिंदी को दुनिया भर में पहचान मिल रही है, अनुवादक की मांग तेजी से बढ़ रही है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्में और डिजिटल मीडिया में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के विशेषज्ञों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं अनुवाद क्या है और क्यों चुने यह करियर? दोस्तों, अनुवादक एक भाषा के कंटेंट को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं बिना मूल अर्थ बदले। हिंदी अनुवाद में आप अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल या विदेशी भाषाओं का काम कर सकते हैं। रेडियो स्क्रिप्ट्स, विज्ञापन, वेब कंटेंट और सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद प्रमुख क्षेत्र है। फ्रीलांसिंग से लेकर सरकारी नौकरियों तक अवसर है। विदेशी कंपनियों के भारत आने से ग्रोथ तेज हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें न्यूनतम योग्यता और शिक्षा क्या है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, कम से कम 55% अंकों के साथ। उसके बाद बीए हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप एमए अनुवाद अध्ययन में या डिप्लोमा कोर्स जैसे पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इग्नू से कर सकते हैं। आवश्यक स्किल्स हैं 2 भाषाओं का फ्लुएंट ज्ञान। रेडियो के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। कोई विशेष डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। दोस्तों, रेडियो में अनुवाद का विशेष महत्व है। रेडियो जिंगल्स, न्यूज स्क्रिप्ट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अनुवादक विदेशी कंटेंट को हिंदी में ढालते हैं। आज इंटरनेट के कारण फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे उपलब्ध हैं जहां पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों शुरुआती सैलरी की, तो ये 10 से 15 हज़ार से शुरुआत होकर आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। दोस्तों, हर क्षेत्र की तरह यह क्षेत्र भी चुनौतियों से भरा है, इसलिए आपको सटीकता, समयबद्धता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखते हुए कार्य करना होगा। ऑनलाइन कोर्स करें, पोर्टफोलियो बनाएं, फ्रीलांस शुरू करें और आप रेडियो क्लेज वॉइस रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अनुवाद के क्षेत्र में करियर चुनकर आप भाषाओं की पुल बन सकते हैं। आज ही कोर्स ज्वाइन करें और इस क्षेत्र में कदम रखें। इस चर्चा के बाद दोस्तों लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम में बस इतना ही। कल युवाणी के नए अंक में हम फिर मिलेंगे। अपने दोस्त मनोज को दें अनुमति। नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे थे युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी।
7: लैका लोग जय हिंद।
8: जय हिंद।
7: यही नारा के साथ आज का अपन ही बैठकी शुरू भइल।
8: हाँ,
7: लैका लोग हमन के बैठकी का इंतजार करना है, कहे कि हमन के अपने कार्यक्रम में नए नए विषय पर चर्चा कर जाला।
8: बिल्कुल सही भैया।
7: आज हमन की बात कही जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में।
8: हाँ, हाँ, हाँ।
7: इस दिवस भैया 16 मई

0: के प्रत्येक वर्ष मनावल जाला, जौन की विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश के महत्वपूर्ण भूमिका के रेखांकित करेला।
1: बिल्कुल सही।
0: ई दिन 1960 में भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैमन द्वारा जौन लेजर के पहला सफल संचालन कैले रहना, ओकरे वर्षगांठ के ई प्रतीक है।
1: बिल्कुल।
0: ए दिवस के मनौला के मुख्य उद्देश्य प्रकाश पर आधारित जौन प्रौद्योगिकी बाटे ओकरे बारे में जागरूकता बढ़ावे के, चिकित्सा, संचार और ऊर्जा जैसन क्षेत्र में जीवन के बेहतर बनावे के बा।
1: बिल्कुल सही।
0: और एकर आयोजन यूनेस्को के द्वारा कैल जाला और ई एको वैश्विक पहल है कि जो पूरे विश्व के स्तर पर मनावल जाला और हर व्यक्ति के प्रकाश के बारे में जागरूक कर जाला कि प्रकाश से कैसे ऊर्जा उत्पन्न कैल जा सकाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ी बात है, ई दिन मनौले के पीछे यूनेस्को वैज्ञानिक सहयोग के मजबूत करे और शांति और सतत विकास के बढ़ावा देवे के खातिर एक क्षमता का उपयोग करे के खातिर आह्वान करेला।
1: बिल्कुल सही भैया।
0: सबसे बड़ी बात है कि ई दिन मनौला के पीछे सौर ऊर्जा के बढ़ावा देवे के भी बा। कहे कि आज देखा जात बाटे घर घर पर सौर ऊर्जा खातिर प्लेट लगावल जात बाटे जौने से विद्युत के उत्पादन हो सके। और ये देखा जाला कि सौर ऊर्जा जौन बाटे ये पर्यावरण के नुकसान के पहुँचावले बिना बिजली के उत्पादन भी करेला और जलवायु के परिवर्तन के समस्या से निपटले में भी मददगार होला।
1: मनोज भैया देखा कितना बढ़िया जानकारी देला, साथे साथे एक चीज लइकन के याद दिएला कि जौन प्राकृतिक अपन ऊर्जा के स्रोत बा अगर ओकर उपयोग हमहन के कैल जा तो जौन हमार पीढ़ी बा आ चाहे वर्तमान में रहे वाले लोग बा चाहे आवे वाला लोग बा उनके जीवन और स्वास्थ्य दोनों सुखमय और सुखद रही।
0: सुखद रही। तो भैया बतकही आगे जारी रही लेकिन लगले हाथ सुन लिया जाए बाल गीत।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग
1: पहले सत नहीं था।
0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हाँ, लड़का लोग सुनल गए बाल गीत और मन मन साइन भइल। अब लड़का लोग के जानकारी दिल जाए कि हमारी पृथ्वी कैसन है और वो भी सब जानकारी देते बाटे डॉक्टर सुनीता पाठक। ये जानकारी सुनल जा और लाभ लेवल जा।
2: बच्चों, आज हम पृथ्वी के बारे में बातें करेंगे। पृथ्वी कहाँ स्थित है, उसका आकार कैसा है, उसके कितने भाग पर जल और कितने भाग पर स्थल पाया जाता है, दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको पता है, हमें प्रतिदिन जिस सूर्य चंद्रमा और तारों को आकाश में देखते हैं, हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा घर है, वो भी उसी आकाश में स्थित है। सूर्य जिससे हमें प्रकाश और गर्मी प्राप्त होती है, वो एक तारा है जो हमसे सबसे निकट का तारा है और पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य हमसे औसत रूप से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश में दूर टिमटिमाते तारे जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, वास्तव में सूर्य से भी लाखों गुना बड़े हैं। उनमें भी सूर्य की तरह अपना प्रकाश होता है। पहले के लोगों का ये मानना था कि सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर रहती है, परंतु हमारे देश में भट्ट ने बहुत पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी हैं। आपको पता है कि ग्रहों की कितनी संख्या है? हमारी पृथ्वी को लेकर कुल 9 ग्रह पाए जाते हैं और कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है आपको मालूम है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। सूर्य इनके मध्य में स्थित है और इस परिवार का मुखिया है। सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ उचित मात्रा में जल और वायु मिलते हैं, जिससे जीवन संभव है। जल और वायु के कारण ही यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम सब जीवित पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि सभी ग्रहों और उपग्रहों का आकार गोल है। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, परंतु इसका ऊपर तथा नीचे का हिस्सा थोड़ा चपटा है, इसलिए इसकी आकृति को लगभग गुलाब या इंग्लिश में इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका घनत्व 5.24 है। पृथ्वी के गोलाकार होने के अनेक प्रमाण भी हैं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्य संसार में सभी देशों में एक ही समय उदय होता और अस्त होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। दूसरा प्रमाण हम ये दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से सीधे एक ही दिशा में बराबर चलता जाए और अंत में उसी स्थान पर पहुंच जाए जहां से वो रवाना हुआ था, ये तभी संभव है जब पृथ्वी गोल हो। कोलंबस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इसी सिद्धांत पर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। प्रमाण के रूप में एक और बात हम कह सकते हैं कि यदि हम समुद्र तट पर खड़े होकर किसी आते हुए जहाज को देखें तो पहले हमको उसका ऊपरी भाग ही दिखाई देता है, परंतु ज्यों-ज्यों जहाज निकट आता है तो उसका नीचे का भाग भी दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार अगर कोई जहाज समुद्र तट से बाहर जाता है तो सबसे पहले उसके नीचे का भाग दृष्टि से ओझल होता है और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर का भाग भी दिखाई नहीं देता। इसका कारण पृथ्वी की गोलाई ही है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर लगातार घूम रही है। इस अक्ष या धुरी के दो सिरों में एक ऊपरी हिस्से हिस्से को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे निचले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच बाएं से दाएं एक रेखा खींची हुई मानी जाती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री होता है। इस रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी भाग में जल की अधिकता है? उसमें भी स्थलीय भाग केवल 28% यानी 28% है, जबकि जलीय भाग 72% है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं और ऋतुएं कैसे बदलती हैं। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं, जिसके लिए पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इस गति के द्वारा ही दिन और रात होते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन और जो भाग पीछे पड़ता है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी की एक और गति होती है जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और वो पूरा एक चक्कर 365.25 यानी 365 दिन का समय लेती है सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक वर्ष इस पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण ऋतुएं भी बदलती हैं। क्या आपको मालूम है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी की वार्षिक गति और उसके अक्ष पर झुकाव मिलकर ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है। साथ ही दिन और रात के परिमाण यानी दोनों के बीच के समय में भिन्नता लाते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष धरातल के साथ समकोण बनाता तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती, जिससे सभी जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। लेकिन पृथ्वी की कक्षा के झुकाव के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ओर झुक जाता है, दक्षिणी गोलार्ध उसके परे हो जाता है, कभी इसके विपरीत दशा होती है। अब हम जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। विषुवत रेखा के समानांतर यानी बाएं से दाएं 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतर से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्त पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 180 होती है। अब किसी अक्षांश रेखा वृत्त पर किसी स्थान विशेष की सही स्थिति जानना है तो हम दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई रेखाएं खींचते हैं, तो ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि 1 से 1 डिग्री के अंतर पर इन्हें खींचा जाए तो इनकी कुल संख्या 360 होगी। अक्षांशों की गणना तो विषुवत रेखा वृत्त अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर ली जाती है, लेकिन देशांतरों की गणना कहाँ से की जाए ये समस्या है। कारण ये है कि सभी देशांतर 1 से हैं, इसलिए सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाए। किसी भी एक देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण तक एक ही साथ दोपहर होती है, मध्याह्न जिसको कहते हैं, इसीलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस तरह कुल 360 देशांतर रेखाओं में से आधी यानी 180 ग्रीनविच से पूर्व तथा 180 ग्रीनविच से पश्चिम, जिन्हें क्रम से पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हमें इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो जहां 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 81 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, वही प्रयागराज की स्थिति मानी जाती है। अर्थात जहाँ एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है वही किसी भी स्थान की स्थिति मान ली जाती है। बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी को मोटे तौर पर दो ही भागों में बांटा जाता है, एक को महाद्वीप कहते हैं और दूसरा हो जाता है महासागर। महाद्वीपों के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां और बहुत सारे स्थल रूप होते हैं, वहीं महासागर में भी इसी तरह के भूस्वरूप पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिनका नाम है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। महासागरों की संख्या 5 है, जिसमें से प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, अंटार्कटिक तथा आर्कटिक महासागर, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा गहराई प्रशांत महासागर की है। इसका क्षेत्रफल 1655 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा गहराई लगभग 5000 मीटर है, जहां स्थल पर सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, वहीं महासागरों की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई 11589 मीटर गहरी है। अर्थात धरातल पर जितनी गहरे स्थल पाए जाते हैं या ऊंचे स्थल पाए जाते हैं, महासागरों में उससे भी ज्यादा गहराई देखी जा सकती है।
1: हाँ लड़का लोग, ये जानकारी दिए बदे डॉक्टर सुनीता पाठक के दिया जाए धन्यवाद। और अपने बैठकी के आगे बढ़ोले से पहले सुन लिया जाए बाल गीत।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के तालनदौर में 393 करोड़ रुपया के लागत से बनावल जा रहल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नींव धैले। ए मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री स्टेडियम के बगल में विश्व स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनौले के घोषणा कैले। वहाँ के बतौले कि स्टेडियम आ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लगे होटल, रेस्टोरेंट और बाजार के नया श्रृंखला विकसित कैल जाय, जिससे ढेरी संख्या में रोजगार पैदा हुई। श्री योगी कहले कि खेलो इंडिया खेलो आ फिट इंडिया मूवमेंट के जरिया से देश आ प्रदेश में एगो नया खेल के संस्कृति आगे बढ़ल है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया, फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी।
0: मुख्यमंत्री बतौले कि प्रदेश में अगले 534 से बेसी पदक जीते वाले खिलाड़ियन के सीधी भर्ती से नौकरी दी हल जा चुकल है। अब 500 खिलाड़ियन बदे नया भर्ती के तैयारी बा। ए मौका पर मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी कहले कि गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नौजवानन के सपना और संभावना के नया दिशा दे। ए मौका पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कमलेश पासवानो मौजूद रहले। केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड CBSE शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित भइले के बाद छात्रन बदे कई गो सुविधा के घोषणा कइले हवे। बोर्ड एबेरी मूल्यांकन प्रक्रिया के औरियो बेसी सटीक आ पारदर्शी बनावे बदे ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली के उपयोग कइले ह। एगो रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी के पुणे से गिरफ्तार कर ले रहे। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हवे आ NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल रहले। एजेंसी पछला 24 घंटा में देश भर में कई जगहिन पर तलाशी अभियान चलौलस आ कई गो आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ मोबाइल फोन जब्त कैलस। इससे पहले गिरफ्तार कैल गईल 5 आरोपियन में से 3 गो जयपुर से, एगो गुरुग्राम से और एगो नासिक से हवे। दुनिया भर में कच्चा तेल के दाम में आयल उछाल के बाद तेल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी कैले ह। राज्य के प्रमुख शहरन में अब पेट्रोल के दाम औसतन 95 से 97 रुपया प्रति लीटर और डीजल के दाम करीब 88 से 91 रुपया प्रति लीटर हो गए बा। प्रदेश के सज्जो जिलन के सज्जो तहसीलन में आज संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन कल गई। ए दौरान अधिकारी लोग जन समस्या के सुनवाई करत ओकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण के निर्देश दिले। बस्ती के सदर तहसील में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना आ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह लोगिन के समस्या सुन लें। बलरामपुर के सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी विपिन जैन आ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौजूद रहें। प्रदेश के सज्जो पूर्वी जिलन में बट सावित्री के त्यौहार आज श्रद्धा भक्ति आ उछा के माहौल में मनावल जा रहा बा। प्रयागराज में आज सवेरे सुहागिन महिला लोगी बट वृक्ष के पूजा कई के अपने सुहाग के लम्हर उमेर आ बढ़िया सेहत के कामना कैलिन। गोरखपुर और गाजीपुर में निर्जल व्रत रही के महिला लोगी बट सावित्री के पूजा कैलिन। ए त्यौहार के महात्म सावित्री और सत्यवान के कथा से जुड़ल है, जिमे माता सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण के रक्षा कैले में सफलता पौले रहलिन। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के तालनदौर में 393 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के बगल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास होटल, रेस्टोरेंट और बाजार की नई श्रृंखला विकसित की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। श्री योगी ने कहा कि खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश और प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था, फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 534 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से नौकरी दी जा चुकी है और 500 खिलाड़ियों के लिए नई भर्ती की तैयारी है। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि गोरखपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम युवाओं के सपनों और संभावनाओं को नई दिशा देगा। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी मौजूद रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों की सभी तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। बस्ती की सदर तहसील में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने लोगों की समस्या सुनी। बलरामपुर की सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी विपिन जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौजूद रहे। प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में वट सावित्री का पर्व आज श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। प्रयागराज में आज सुबह सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की। गोरखपुर और गाजीपुर में निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। इस पर्व का महात्म्य सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने में सफलता पाई थी। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ तो पंच भाई यही नारा के साथ आज का अपन ही बैठकी शुरू है।
1: भैया मनोज भैया देखा पुरहर मनमलसा वो जो है नारा के साथ ही अपन बैठकी शुरू है। और बैठकी के साथ साथ भैया देखा पंच भाई जो है इबाती का हो रहा है ये कार्यक्रम के माध्यम से हम हन के कुछ उनके भुलाई भटकल रहे हैं उनके बतावल जाए और कुछ नया बतावल जाए जौन विशेषज्ञ के द्वारा बतौले के प्रयास कर गए।
0: हाँ भैया इस समय जो बाटे खरीफ के फसल सबके खेती में बाटे खरीफ के फसल में कुछ खरपतवार भी निकल जाला लोग सामयिक कार्य करके खरपतवार निकालत बाटे। और कुछ लोग जो पौधा लगावन है पौधन के बीच में भी बहुत सारा खरपतवार उत्पन्न हो जाला तो ओके कैसे निकालल जाए निराई गुड़ाई उसे कैसे कर जाए और उसे पौधन के का लाभ बा यही विषय में उनके आज चर्चा कर जाए।
1: बिल्कुल सही भैया देखा मनोज भैया इतना बढ़िया मनोज शुरुआत कैला कि पौधन में ये भैया देखी जो है बाग बगीचा है ये लगावाला तो आप चाहे गेहूँ में जाला तो बड़ा आनंद के अनुभूति होला लेकिन साथे साथे एक बात ही का जरूर ध्यान देवे के चाहिए कि जहाँ बाग बगीचा में जा वहाँ पे फूल पत्ती होके साफ सुथरा जगह होके तब वह वहाँ बैठ के और अपन दिनचर्या चाहे कौन ऐसा काम बा वहीं आराम से बितावल जा सका जाला। और साथे साथे भैया अगर जौन पेड़ पौधा लगावल बा बगीचा में ओकरे आसपास निराई यानी जो खर पतवार बा ओके निकाल दिया जा ओके गुड़ाई कर दिया जा साफ सुथरा कर दिया जा पानी चला दिया जा तो उसे एक बात के निश्चितता तय हो जाला कि जौन खर पतवार निकल जाला तो जो पोषक तत्व बा सीधे वही पेड़ पौधा के मिलाला जिके जरूरत बा आ ना ही निकली है तो जौन खर पतवार बा वो पोषक तत्व उन्हें में बट जाए।
0: भैया अच्छा बात कहला निराई गुड़ाई से कौन लाभ होला जैसे कि निराई से का कर जाला कि जौन खर पतवार निकाल दिया जाला जब गुड़ाई कर जाला जब पानी डाल जाला तो पानी का अवशोषण कराला तो यानी कि पौधा के आस पास लगातार नमी बनल रहे और नमी बनल रही और वो गर्मी के मौसम में अगर नमी बनल बा तो पौधन के बहुत फायदा करी और पौधा का वृद्धि बहुत अच्छे से हुई।
1: हाँ भैया देखा आज मनोज भैया देखा था कि कुछ न कुछ नया बतौले के मन बना रख ले बाटा जैसे ही कहा है कि भाई पौधन के जो है गर्मी के सीजन बा हमेशा पानी देवे के चाहिए तो भाई देखा जौन अपन मनई बाटे उ तो भाई चेतन प्राणी है सब कुछ जानता है गोरु चौवा चिरोई चिरुंग ये सब नहीं जानता है लेकिन उन्हों के साथ जे पशुपालक भाई लगल बा ते उनका ध्यान करता है लेकिन भैया जे खेती बाड़ी के काम कैले बा बाग बगीचा के काम कैले बा ओके बाती के जरूर ध्यान देवे के पड़ी कि ये समय उनके जौन बाग बगीचा बा उसमें का जरूरी
0: पानी के ज्यादा आवश्यकता है और सख्त सतह रही अगर बहुत कठोर सतह रही तो उसमें पानी जम नहीं सका रहा है उसमें रुका पानी ज्यादा दिन तक नमी नहीं उत्पन्न कर सका इसलिए निराई गुड़ाई कर जाए तो हमें पानी और अवशोषण क्षमता बढ़ जाए।
1: हाँ आज पानी का अवशोषण क्षमता बढ़ जाए तो भैया जो पौधा के विकास व वृद्धि जो है तेज हो जाएगी।
0: हाँ
1: और जब भैया विकास वृद्धि तेज हुई तो जौन ओकर शाखा बा और तना बा पत्ती बा फूल बा फल इतना बढ़िया हो
0: जाए विकास करी।
1: हाँ जब विकास करी तो ये लगोगे बात तेकर आर्थिक लाभ भी हुई जो परिवार के भी लाभ हुई और उसे जो है जो बाजार में उनका जरूरत बा पूरा हो जाए।
0: पंच भाई उनकी बैठकी है क्या अपन आगे बात कही कही जाए लेकिन लगले हाथ सुनल जाए लोग की।

0: किसान
1: बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लड़का लोग सबसे बड़ी बात हमन के बात करत रहनी है कि निराई गुड़ाई से पौधन के का लाभ होला और हमन के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ से सुनल जाए एक भेद वार्ता सूरन की खेती कैसे कर जाए इस विषय पर जानकारी देत बाटे डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र इनसे बात कही करत बाटे कृष्णचंद।
2: किसान भाई जे भी खेती बाड़ी के काम कर रहल बा ओकरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलत रहेला कि ऐसा कुछ काम कैल जाए ताकि बढ़िया आमदनी होके एकरा खातिर आप सबके प्रयास भी जोन बा हमेशा रहेला। अगर बात कैल जा सब्जी के तो सब्जी के फसल ऐसा बा जौने के बाजारी में पहुँचा के तुरंत जौन बा नगद नारायण आमदनी कैल जा सकेला। सब्जी में भी कई तरह के सब्जी ऐसा बाटी जौने के हमेशा बाजारी में मांग रहेला। अगर केहू के पास खेती बाड़ी कम बा बाग बगीचा लगौले बा तो छाया में भी हो सकेला। हम बात कर रहा ही सूरन के, सूरन के खेती कैसे कैल जा ताकि आप सबके बढ़िया आमदनी मिले यह विषय पर जानकारी देव खातिर हमारे साथ मौजूद हमें वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में उद्यान वैज्ञानिक के रूप में जौन बा कार्यरत हैं और आप यहाँ के प्रभारी भी हैं। मिश्रा जी हम आपसे सबसे पहले यह जानल चाहब कि सूरन के खेती कौन तरह के माटी में कैल जा सकेला।
3: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सूरन जिसे हम जिमीकंद या ओल के नाम से भी जानते हैं ये एक प्रकार की वेजिटेबल के अंतर्गत आता है जो कंद वर्गीय में है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है। इसे बोलते हैं ना कि इसको खाने से पेट बहुत साफ होता है, पेट के लिए रामबाण इसको कहा जाता है। सूरन की खेती के लिए हमें बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और उसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 6.5 से लेकर 7.5-8 के बीच में होना चाहिए और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और भूमि में जल भराव ना हो, यानी जहाँ पर हमारा पानी न रुकता हो वो भूमि इसके लिए चयन करनी चाहिए, तब हम उसमें सूरन की खेती कर सकते हैं। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि किसान भाई के पास इतनी भूमि नहीं होती है कि वो अन्य सब्जी के लिए इतनी जगह निकाल सके, तो इस परेशानी को देखते हुए अगर किसान भाई चाहें तो सूरन की खेती जो है हमारे छाया में भी हो सकती है, क्योंकि सूरन छाया प्रिय सब्जियों में भी गिनती होती है, इसके नाम आता है। तो सूरन को हम बाग जैसे हमारे पास आए आम का हो या अमरूद का हो या आंवले के किसी का बाग हो तो उसके अंतर्गत भी इसकी खेती को हम कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब सूरन का कौन कौन निम्न प्रजाति हैं जौना के अपन किसान भाई यहाँ पे लगा सकें?
3: देखिए सूरन जो है वो इस समय जो हमारे इस एरिया में काफ़ी प्रचलित है वो है गजेंद्र। ये आपके उड़ीसा से हो तो बिहार से हमारे उत्तर प्रदेश में आया है और गजेंद्र जो है ये इसका खासियत क्या है कि इसमें एक कंद होता है। इसके मुकाबले जो हमारे देसी कंद होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए 4-5 कंद टाइप के होते हैं, तो इसकी पहचान है कि ये पहली बात एक कंद के रूप में आता है तो वो गजेंद्र है
2: जी।
3: और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे देसी सूरन जो हम लोग खाते हैं तो हमारे गले में एक प्रकार से कहते हैं काटता या खराश पैदा होता है,
2: खुजली टाइप में घर काटेला,
3: हाँ, तो उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है
2: जी।
3: लेकिन गजेंद्र में इसमें ऑक्सैलिक एसिड नहीं पाया जाता है इसलिए ये गले में खराश भी पैदा नहीं करता है। दूसरी बात गजेंद्र की वैरायटी जो है ये इस समय आपको जो है लगाने के लिए बहुत सूटेबल समय चल रहा है, इसको आप फरवरी मार्च से लेकर जून तक लगा सकते हैं।
2: आप एक प्रजाति बतौली है गजेंद्र, गजेंद्र के अलावा भी कोनो दूसरे प्रजाति जौने का अपने यहाँ लगावल जा सके?
3: गजेंद्र के अलावा हमारे नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की भी नरेंद्र सूरन एक है जो इस एरिया के लिए भी प्रचलित है, उसको भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इस समय मार्केट में आप जाएंगे तो बाजारों में आपको गजेंद्र ही सूरन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में किसान और जो हमारे उपभोक्ता हैं जो है किसके हैं वो काफ़ी इसको पसंद करते हैं।
2: ये जो ना बिया बतौली है अगर केहू एक लगावल चाहता तो वो कहाँ से मिली?
3: इसका जो बीज है गजेंद्र सूरन का बीज जो है ये आपको जो स्थानीय मंडी है वहाँ पर व्यापारियों से संपर्क करेंगे तो वो आपको 10-12 दिन पहले संपर्क कर लेंगे तो वो आपको उपलब्ध करवा देंगे।
2: डॉक्टर साहब केहू किसान भाई अगर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूरन लगावल चाहता तो कुल लगभग कितना बिया की जरूरत पड़ जाएगी?
3: देखिए ये गजेंद्र सूरन अगर आप एक हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं तो ये आपके कंद की मात्रा और दूरी पर डिपेंड करता है
2: जी।
3: अगर आप कंद व्यापारिक दृष्टि से लगाना चाहते हैं कि हमको इसको दीपावली के आसपास कंद निकालना है और हमें जो है इससे व्यापार के रूप में अच्छा पैसा लेना है तो कंद आपको 500 ग्राम से अधिक एक टुकड़े की मात्रा जो लेंगे तो दूरी आप 90 से 90 सेंटीमीटर रखेंगे तो लगभग आपको 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वही दूरी अगर आप 500 से लेकर 400 ग्राम तक रखेंगे और दूरी आप 75 पर रख लेंगे 75 × 75 सेंटीमीटर तो आपको 60 से 65 कुंटल सुरन की आवश्यकता पड़ेगी।
2: मतलब आप कह लें कि 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और कंद से कंद की दूरी 75 सेंटीमीटर रखल जाए,
3: रखेंगे तो 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर पड़ेगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन अगर 90 × 90 रखेंगे तो आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा।
2: जी जी, वैसे सही का पड़ी
3: 75 × 75 जो है वो आपका सही दूरी रहेगी।
2: अच्छा, एक कंद कमाने की व्यवस्था हो

0: हमने उसको टुकड़े में काटना है तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हर टुकड़े में एक आँख का कोई ना कोई अंश होना चाहिए। जो बीच में गोल सा बना होता है काले रंग का, वो आँख होती है, सुनपुका जिसे बोलते हैं, वो हर टुकड़े में जानी चाहिए। अगर चार टुकड़े काटेंगे तो उसको बीच से इस तरीके से काटेंगे कि चारों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सा वो उसमें रहे, ताकि जमाव उसको वहीं से लेना है। काटने के पश्चात हम क्या करते हैं कि जैसे कोई टब या बाल्टी ले लेते हैं जो बड़ी सी हो, उसमें हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है आप कार्बन डाइजिम ले लीजिए या बेबिस्टिन ले लीजिए, कोई भी चीज़ घोल के उसमें हम इसको डाल देते हैं।
1: टुकड़ा डुबा दिया
0: जाता है, कम से कम 30 से 35-40 मिनट तक डुबा रहने देते हैं। उसके बाद उसको किसी बोरे वोरे इत्यादि पर रख के छाया में,
1: जी
0: धूप में नहीं, छाया में उसको 3 से 4 घंटे सुखा लेते हैं। 3 से 4 घंटे सूखने के पश्चात ही हम खेत में रोपण करने के लिए ले जाते हैं।
1: अच्छा, एक बोले का सही समय का है कि साझी का बोल जा या जौन बा सवेरे बोल जा धूप निकलना से पहले?
0: नहीं, बोने का सीजन तो जैसे आप कोई भी चीज़ सब्जी की बुआई करते हैं तो उसको हम लोग यही कहते हैं कि मतलब सूरज जब रोशनी कम हो तब बोइए। शाम के समय जो है ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि इसको बोया जाए, मतलब और बहुत तेज़ धूप उसमें दोपहर में इसको हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। जब हमें किसान भाइयों को सुरन लगाना है, जिमीकंद लगाना है, तो उनको खेत की, मैंने बताया कि इसमें सुरन की खेती को बहुत अच्छी उर्वरक वाली ज़मीन चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद,
1: जी
0: की आवश्यकता अगर है हमारे पास अवेलेबल तो उसको हम खेत में
1: अंतिम जुताई के समय
0: बिखेर दें, उसके बाद जुताई कर दें। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो तीन हमारे एनपीके जो मेन तत्व माने जाते हैं, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम हमारा ये पोटास, ये हम 1 हेक्टेयर की मात्रा बता रहे हैं तत्व के रूप में।
1: जी जी,
0: इसको जब हम लेंगे तो फास्फोरस हम पूरी मात्रा मिला देंगे
1: जी
0: अंतिम जुताई के समय, नाइट्रोजन और पोटास की 3 भागों में बांट लेंगे और 1 भाग अंतिम जुताई के समय उसको हमने मिला के खेत तैयार कर देना। और खेत तैयार करने के पश्चात जो मैंने आपको दूरी बताई कि 75x75 सेंटीमीटर के आधार पर जमीन से कम 5-6 सेंटीमीटर अंदर हमारा कंद रहना चाहिए।
1: अच्छा, 5-6 सेंटीमीटर गहराई पे कंद डाला जाए?
0: हाँ,
1: अगर ज्यादा गहराई पे पड़ जाए तो क्या दिक्कत?
0: नहीं, ज्यादा बहुत गहराई के इसलिए नहीं हम मना करते हैं, क्योंकि जैसे हम आलू लगाते हैं उसकी तरह मेड़ी चढ़ानी है।
1: जी जी,
0: जब हम मेड़ी चढ़ाएंगे तो ऑलरेडी हमारे ऊपर मिट्टी आएगी और हमारा कंद नीचे चले जाएगा।
1: हाँ,
0: तो जमाव में कम होता है, तो इसी पर्पज से मैंने बताया 4-5 सेंटीमीटर नीचे हमारा मिट्टी के रहने चाहिए। उसके बाद जमा हो जाए तो हम फिर जो है 30 दिन बाद और 60 दिन बाद जो हमारी बची हुई मात्रा है नाइट्रोजन और पोटास की, उसको हम मेड़ी चाहते समय खरपतवार निकालने के पश्चात उसको हम देंगे। लेकिन बुआई करने के पश्चात जब हम खरपतवार या किसी पुआल इत्यादि से इसको ढक देंगे, क्योंकि नमी बनी रहेगी और 10 से 15 दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा,
1: खरपतवार भी नहीं निकली।
0: हाँ, खरपतवार भी कंट्रोल में रहेगा आपके, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसको ढकवाई मतलब अवश्य करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे बुआई हो गई तो बुआई के कितना दिन के बाद एमान पहली बार पानी देला का जरूरत पड़ी?
0: देखिए, जब हमने बुआई की स्टार्टिंग में तो 15 से 20 दिन के बाद इसकी बुआई करेंगे और 30 दिन के लगभग पर
1: जी
0: जब थोड़ा सा उसका हो जाएगा, तो जब खरपतवार हम हटाएंगे, जब बुआई अंकुरण होना शुरू होगा तो हम खरपतवार के मतलब जो आपने पुआल इत्यादि लगाया है उसको हम हटा लेंगे वहाँ से।
1: जी जी,
0: जब हटा लेंगे तो हमको जरूरत पड़ती है कि अब हम इसकी निकाई गुड़ाई करें।
1: जी जी,
0: क्योंकि मांगती है फसल। जब हम निकाई गुड़ाई करेंगे तो उसी समय उसको मट्टी चढ़ा देंगे।
1: जी जी,
0: और मट्टी चढ़ाने के पहले जो मैंने आपको मात्रा बताई थी कि 2 मात्रा आप रखे रहिएगा, वो 30 दिन बाद फास्फोरस की और आधी मात्रा उसकी और नाइट्रोजन की इसमें डाल देके मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना है। फिर हमें उसके बाद पानी डालना है और ये प्रक्रिया 60 दिन बाद यानी 30 दिन बाद फिर
1: जी जी
0: दोबारा जब हम करेंगे तो फिर सेम वही प्रक्रिया करेंगे पुनः। फिर हम वही नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा, फास्फोरस की बची हुई मात्रा जो हमारी थी, भाई हमने 150-150 बताया था
1: जी जी,
0: तो 50 शुरू में डाल दिया आपने, 50 सेकंड वाले में डाल दी और जो 50-50 बची है उसको अंतिम उसमें डाल के फिर मिट्टी चढ़ा के तब हम उसको जो है करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, सूरन में लगभग कुल कितना सिंचाई की जरूरत पड़ जाएगी?
0: सूरन में आपको कम से कम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि जब उसको फरवरी में बोते हैं मार्च में तो उसके बाद अगर गर्मी पड़ जाती है तो उसमें अगर हम क्या करते हैं कि इसीलिए जब इसको कहते हैं कि ढके रहिए ताकि इसको वो बचा रहे, नमी बची रहे जमीन के अंदर। दूसरा, जुलाई में जब बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी आपको देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और मैंने बताया कि जहाँ जल भराव वाला एरिया है वहाँ पर सुरन उसको लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि पानी भरने से कंदवर्गी उसमें जो भी उसके कंद बनते हैं उस पर विकास में प्रभाव पड़ता है।
1: एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब, कि जौन सूरन का फसल बा एक कौन कीड़ा प्रभावित कर सकाला या कौन बीमारी का मन प्रकोप हो सकेला, जौने के लेके अपन पंच भाई पहले से सचेत रहें?
0: इसके देखिए, इसमें स्टेम रॉट वगैरह लगता है और जहाँ जल भराव का एरिया आएगा वहाँ ये सब प्रॉब्लम आती है। अगर हमने

0: ट्रीटमेंट प्रॉपर जो बताया है आपको शुरू में कर लेंगे तो ज़्यादातर बीमारियां इसमें फिर लगने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती हैं। अगर कोई बीमारी लगती है तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग, समय पर किसान संपर्क कर लेंगे उसको हम रोक सकते हैं।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि बीया का शोधन अगर कर लिया जाए तो जो दिक्कत ऐसे आदमी
0: काफी बचा जा सकता
1: है। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में केहू जोन बा सुरन लगावता तो लगौले से लेके पैदावार के समय तक लगभग कितना लागत को लग जाए?
0: देखिए, अगर एक हेक्टेयर में आप लगाते हैं तो सुरन की कीमत को देखते हुए इसमें 1,25,000 रुपए के आसपास प्रति हेक्टेयर खर्चा इसका लगभग गिरेगा।
1: अच्छा, एक हेक्टेयर से लगभग कितना उत्पादन मिल जाएगा?
0: और जिसे कंद मान लीजिए, इसका नॉर्मली ये अनुपात ये है कि जैसे हमने 1 किलो का कोई कंद लगाया बीज के रूप में, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, तो वो उसका 8 गुना होगा। अगर 1/2 किलो का लगाया तो उसका 8 गुना कितना होगा? 4 किलो हो जाएगा। तो लगभग 4 गुना हमको इसकी लगभग ये मांग के चलते हैं कि 1,25,000 लगाने के बाद हम जो है करीब 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से आमदनी प्राप्त कर लेंगे। तो यानी हमारा जो खर्चा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो 2 लाख के आसपास हमको इसकी आमदनी प्राप्त,
1: मतलब मोटी मोटा किसान भाई मान के चले कि
0: 2.5 लाख रुपए
1: एक हेक्टेयर क्षेत्रफल से 2 से 2.5 लाख रुपया तैयार हो जाएगा।
0: ये जो है 5 से 7 महीने की लगभग क्रॉप होती है। फरवरी में बोएंगे तो हम अक्टूबर लास्ट में नवम्बर में खुदाई कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ दीपावली पर जनरली सुरन खाने की परंपरा होती है तो बाजार उसका अच्छा मिल जाता है, इसलिए किसान उसको उसमें सेल कर देते हैं।
1: जैसे साल में कभो नहीं खा लो वो दीपावली पर जरूर खा
0: लो, खाते हैं तो उसमें उसको फरवरी में बोएंगे तो वो उसमें तैयार हो जाता है। और जब हम इसको जून में बोते हैं तो जब जून में बोते हैं तो जब उसकी वो 7 महीने के बाद आगे बढ़ा था, जनवरी में फरवरी में खुदाई करते हैं तो वो मात्रा हमारी बीज के लिए रहती है। तब उसको हम बीज के लिए सेव कर लेते हैं, अपने संरक्षित कर लेते हैं और अगले साल उसी बीज को बढ़ा देते हैं और ताकि हमारे पास अधिक सुरन पैदा हो।
1: सुरन की खेती कैसे कर लिया ए विषय पर डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी आप इतना निम्न जानकारी दे ली, एक खर्तिन आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो पंच भाई, सुरन के खेती के बारे में जानकारी लेने और इस समय सुरन के खेती के जैसे बुवाई शुरू हो बाटे तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर और अधिक से अधिक सुरन के खेती करके लाभ कमाई जा सकला। पंच भाई यही के साथ घर
3: इशारा कही रहा कार्यक्रम के समाप्त कर जा। पंचो कल फिर मिल जाए यही समय, तब तक खातिर पंचो जय जवान जय किसान।
2: अच्छा
4: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
5: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाश

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
6: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा इस अंतराल के बाद।
7: तक भारत एक आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
8: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
7: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
8: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
7: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
8: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज के कलाकार हैं राम ज्ञान और साथी।

0: राम ज्ञान और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। देश हमार, आइए सुनते हैं कहानी। शीर्षक है चूक, स्वर कन्हैया लाल रोनियर की है।
1: रामपुर गांव में बसल एगो परिवार के है। परिवार के मुखिया के नाम बृद्धि चंद रहल। बृद्धि चंद के दुई गो बेटा और एगो बेटी और उनकर परानी शांति रहली। कुल 5 जने के भरल पूरल परिवार रहल। भरण पोषण हेतु एक ठो दुकान रहल। जिंदगी निम्ने से गुजर बसर होत रहे। रवि परिवार में बड़वार बेटा रहलें और बेटी सबसे छोट रहली। रवि के बियाह भइले करीब 1 साल हो गए रहल। आजकल के समय ऐसन चल रहल बा कि होश संभरते लड़के ही जानल चाहत बाने कि हमार खेत मकान और दुकान कौन कौन है, अच्छा मतलब कौन है। रवि के बियाह भइला के 1 साल तो राजी खुशी के माहौल घर परिवार में रहल। लेकिन बाद में रवि के दुल्हिन गीता बेर बेर रवि के कोचें आ ई समझावें कि देख तू यह घर में बड़वार सदस्य बाड़। घर परिवार के खर्चा पानी के इंतजाम के साथे साथे छोट भाई और छोट बहिन के शादी बियाह भी कैला के सगरो बोझा तोहरे ऊपर ही पड़ी। इतना कैला के बाद भी हमनिन के जिम्मेवारी कम नाई हुई। बूढ़ा बूढ़ी के निर्वाह भी हमनिये के करे के पड़ी। यह तरह हमनिन के जिंदगी में कौनो सुख नाई मिल पाई आ जिम्मेवारी के निर्वाह करते करते ही हम लोग मर खप जाई जाई। अब हम लोग अलगा रहल जाई। हम तोहरे माई बाप के साथे रह नाई पाई। जबकि रवि के परिवार में सब लोग प्रेम भाव से साथ साथ रहत रहलें। कौनो बात के कमी नाई रहल। लेकिन कहल जाला कि जब बिगड़े के रहेला तो बुद्धि बदल जाला। एहमन गीता के ही दोस्त नाही रहल। रवि भी बचपन से ही आज़ाद ख्याल और स्वेच्छाचारी रहलें। उनके कौनो तरह के रोक टोक पसंद नाही रहल। तो एक ओर गीता भी रवि के घर परिवार से अलगा फरका होके खातिर बेर बेर कोचें। कहावत है कि एक तो करैला आ ऊपर से नीब चढ़ल। रवि अपन घर परिवार छोड़ के गीता के साथे शहर चली अइने। शहर में किराया के घर में रवि गीता के लेके साथे रहे लगलें और वही घर में ही एगो दुकान भी खोल ली हन। समय पाँख लगा के बीते लागल। 1-2 साल तक बड़ा अच्छा लगल। लेकिन समस्या तब खड़ा भइल जब गीता गर्भवती भइली और उनकर तबीयत समय समय पर खराब होखे लागल। कारण रहे कि ऐसन समय में उनकर देख रेख करे वाला केहू नाई रहल। परिणाम ई भइल कि गीता के अस्पताल में भर्ती करे के पड़ल आ अस्पताल में ही अंशु के जन्म भइल। अब घरे तक केहू देख रेख करे वाला रहल नाही। एह बदे गीता के अस्पताल में ज्यादे दिन रहे के पड़ल। गीता अब घरे आ गईली। उनके इलाज में लाखों रुपया खर्च हो गई। खर्चा से रवि टूट गई ने। दुकान भी टूटले के स्थिति में आ गई। कहीं भी रवि कौनो भी काम से बाहर भीतर जाए तो दुकान बंद करे पड़े, बंद कहके जाए। स्थिति दिनों दिन दयनीय होत गई। अब रवि निरंतर दबाव और तनाव में रहे लगने। तनाव उनके रोगी बना दिलस। रवि सोचें कि बाबूजी से अलग होके हम बहुत गलती कनी। अब हम कौन मुँह लेके बाबूजी के पास जाहीं। इहे सोचत सोचत रवि के एक दिन दिल के दौरा पड़ल आ उ चली बसने। वो समय अंशु 1 साल के रहने। गीता और अंशु अब तो एकदम अनाथ हो गई हैं। गीता रवि वाला दुकान चलावे लगली। देखत देखत 10 साल के समय बीत गई। वो 10 साल के समय में गीता के ऊपर कवन कवन विपत्ति या दुख दुर्दशा के सामना करे के पड़ल ई गीता ही जानत रहली। उनके भी अपने गलती के एहसास होखे लागल। उ सोचें कि हमसे लड़िकपन में बड़ा भारी गलती हो गई। एक दिन के बात है, अंशु कोनो कारण से स्कूल नहीं गई रहने, घर में दुकान में अपने माई के साथे बैठल रहने। गीता बहुते उदास रहली। उनके उदास देख के अंशु अपने माई से पूछल कि माई, तू हमेशा उदास ही रहेलू, कब्बो कोनो बातचीत नहीं करेलू, एकर का कारण है। गीता अपने जिंदगी के सब कहानी अंशु के सुनौली, जवन कि एकरा पहले अंशु कुछ भी जानत नहीं रहने। सब बात सुन के अंशु अपने माई गीता से कहल कि माई, अब तक जवन भइल उ वापस नहीं आ सक। बाबूजी जवन गलती कैलें ओके हम दोहराएब नहीं। कहल जाला कि बीतल बात बिसार दे, आगे के सुध ले। हम तोहके लेके अपने बाबा के घरे जाइब और हम लोग बाबा के गोड़ छान लिहल जाई, अपने गलती के माफ़ी मांगल जाई, उ जरूर हम लोग इनके अपना ली हैं। अंशु अपने माई के साथे अपने बाबा के घरे गईने। गीता अपने ससुर सास के से अपने कैला गलती के माफ़ी मांगते हुए कहली, हमसे बड़ा भारी गलती हो गई, जौन कि हम लोग आप लोगन के छोड़ के चली गईनी, आर इहे गलती हमारे पति के लील लहलस, उ हम लोग के अनाथ छोड़ गई न। रवि के मृत्यु जान के सब लोग के बड़ा धक्का पहुँचल। गीता अपने सास ससुर से कहली कि सवेरे के भुलाइल हम साझी के अपने घरे आ गई बानी, रउआ हम लोगन के अपना ली। इतना बात सुन के बूढ़ा बूढ़ी दोनों लोग अपने बहू और नाती के अखबारी में भर लिहल लोग। एह तरह से बिछुड़ल परिवार अब एक हो गए।
0: अभी आप सुन रहे थे कहानी चूक। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बांग्ला लोकगीत।

0: ও ভাই মানুষুরি, সুযোগ পায়ে সময় হারাসিনি।
1: प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम इस तबक में अभी आप सुन रहे थे बांग्ला लोकगीत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
3: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने। प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
3: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
2: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
5: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
2: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
6: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
2: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए यह कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जल स्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज का संगीतकार, आज के संगीतकार हैं प्रीतम चक्रवर्ती।

0: से कन्याकुमारी तक भारत एक आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: आइए सुनते हैं मेट्रो फिल्म से ये गीत।
1: होने लगे काबू दिल पे रहना, हस्ती हमारी।
0: आज के संगीतकार हैं प्रीतम चक्रवर्ती।

0: थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज का संगीतकार, आज के संगीतकार थे प्रीतम चक्रवर्ती। खामोशियां फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। नरेंद्र कुमार शर्मा की वार्ता सुनिए, स्वतंत्रता आंदोलन और छायावाद।
1: साहसी और ऊर्जावान युवा पुरुष मिल जाएं तो मैं देश भर में क्रांति ला सकता हूं। शुरू से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद का यह कथन राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति के महत्व को दर्शाता है। और सचमुच स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, फाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस आदि युवाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यह साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत माता की इन वीर और साहसी संतानों के सामने अंग्रेजों की एक न चली और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं चीन द्वारा किए गए युद्धों का सामना करना पड़ा। देश पर अनावश्यक रूप से थोपे गए इन युद्धों के दौरान हमारी सेना के जवानों ने जिस वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, उससे हम भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाता है। कुछ वर्ष पूर्व हमारी सेना ने करगिल में घुस आई पाकिस्तानी सेनाओं को भी छक्के छुड़ाए थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मुंबई में ताज एवं अन्य स्थानों पर किए गए हमलों में भी भारत के जाबाज सेना अधिकारियों और कमांडोज ने पूरी बहादुरी का परिचय दिया। सभी आतंकवादी मार गिराए गए और एक को बंदी बना लिया गया। भारत के युवा वीरों की यह गाथा किसी से छिपी नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में भारत के युवाओं ने देशभक्ति के अतिरिक्त अध्यात्म, धर्म, साहित्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में भी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। बिना युवा शक्ति के भारत सोने की चिड़िया न कहलाता और अपनी अनगिनत देशों से विश्व को अभिभूत न कर पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, संपूर्ण मानव जाति को उस भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने विश्व को शून्य दिया है। मैक्स मूलर ने भी भारतवर्ष की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि मुझे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने मुख्यतः अपने गुणों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के साथ सोच विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे रहस्य ढूंढ निकाले जिनकी ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने प्लेटो और कास्ट का अध्ययन किया, तो मैं भारत की ओर से संकेत करूँगा। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं अपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। भारत के उपलब्धियों के पीछे देश युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। आज IIT, IIS जैसे देश के बड़े शैक्षिक संस्थानों या अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं के आविष्कारों और शोधों की बदौलत भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत के छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर भी विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से अभिचरित कर रहे हैं तथा महात्मा गांधी के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला यह कृशकाय शरीर भी इतिहास के रुख को बदल सकता है। आज इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्यकार अंधकारमय है। वर्ष 1979 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को संगठित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक विशाल अभियान चलाया था, जिसमें युवा वर्ग को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, निश्चित ही देश का राजनीतिक चेहरा बदल चुका है, पर विद्यार्थियों की समस्या वैसी ही है। उनके मन में असंतोष की जो चिंगारियां हैं वे अब प्रकट हो रही हैं। यदि इस असंतोष की रचना दिशा न दी गई तो अराजकता पैदा होगी और देश का भविष्य अस्थिर हो जाएगा। हमारा प्रयास शैक्षिक क्रांति की ज्योति जलाकर छात्र मानस को स्वतंत्र दिशा में मोड़ने का है। हरिवंश राय बच्चन ने इस भारतीय युवाओं को इस प्रकार समझाया है, युग का युवा मत देखो दाएं और बाएं, झांक मत बगले, अगर कुछ देखना है तो देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरा खड़ा युग जुड़ा। सचमुच यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्य में जुट जाए तो उस देश को समृद्ध और उन्नत होने में कोई नहीं रोक सकता। आज भी युवा पीढ़ी सोई नहीं है, उन्हें भी देश दुनिया की उतनी ही चिंता है जितनी देश के बड़े बुजुर्गों को है। देश के लिए यह भावना हितकर है। आज भारत के युवाओं को अब्दुल कलाम की इस पंक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, आकाश की ओर देखो, यह हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें वो हक प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को आह्वान करते हुए कहा था, समस्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो, मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो, तत्पर हो जाओ, जरा जीर्ण होकर थोड़ा थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने के बजाय वीर की तरह दूसरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना, क्या यह अच्छा नहीं है? आज भारत के युवाओं को विवेकानंद के विचारों से सीख लेकर उन्हीं को बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, तभी वे बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज

आवश्यकता है उन्हें स्वयं को युवा होने की कसौटी पर जांचने की कि क्या वे अनीति से लड़ते हैं, दुर्गुणों से दूर रहते हैं, काल की चाल को बदल सकते हैं, क्या उनमें जोश के साथ होश भी है, क्या उनमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, क्या वे समस्याओं का समाधान निकालते हैं, क्या वे प्रेरणा के इतिहास रचने वाले हैं और क्या वे कहीं बातों को करके दिखाते हैं। आज युवाओं को महात्मा गांधी के कहे इस कथन को मर्म को समझने और उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आपको देखना चाहते हैं।

अभी आप स्वतंत्रता आंदोलन और छायावाद पर नरेंद्र कुमार शर्मा की वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते।

पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अमूल्य योगदान दें।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटन समारोह की रिपोर्ट। संकलन और वाचन नवीन पांडे, प्रस्तुतकर्ता नूर मोहम्मद।

पूर्वांचल को आज एक बड़ी सौगात मिली जब गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तालनदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया।

0: इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि ये परियोजना पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रहा है।
1: सरकार ने बहुत से काम किए हैं, बहुत सी सड़कें, बहुत से फ्लाईओवर गोरखपुर में बने हैं, पूर्वांचल में बने हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा करके हमारी सरकार ने पूर्वांचल के युवाओं को उनके अगले भविष्य के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री भारत सरकार और सम्मानित मंच का प्रणाम करते हैं और आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं।
0: गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर अब खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल गोरखपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी।
2: क्यों सोचले ना रहाल कि वैसन दिन ही हमारे गोरखपुर देखियो, हमरे स्कूले का लड़का बच्चा बिटिया लोग यहाँ देख रहे हैं, पूरा स्कूल युवा साथी नौजवान आज आया है अपने सपनों को पंख लगते हुए देखते हुए। धन्यवाद महाराज जी, आज हमारी लड़की खेलेगी स्पोर्ट्स, हमारा लड़का खेलेगा क्रिकेट, हमारी बिटिया को भी सपनों को एक पंख मिलेगा इस ऐतिहासिक 42 एकड़ के ऐतिहासिक स्टेडियम में। 108 एकड़ तक की पूरी मात्रा क्षमता है ये, 398 करोड़ लगेगा। बच्चों को, गरीबों को, गांव देहात के लड़कों को सपनों को पंख देने के लिए बड़ा भावुक पल है आज, यह ऐतिहासिक पल गोरखपुर इसका साक्षी बन रहा है। समस्त भारत की नजर है, समस्त उत्तर प्रदेश की नजर है, पूर्वांचल की नजर है कि ये देखा हो, आज देखा ये भव्यता सोचने रहला। हम आ रहे थे, आंख चौंधिया गई हमारी, हम बोले बाहरे भगवान, बाहरे महादेव। स्पोर्ट्स को अपने जिंदगी में लाओ, स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी में साध लो और आगे बढ़ो, ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल, एयरपोर्ट 500 करोड़ में, अब रेलवे स्टेशन 5 स्टार हाई ग्रेड की तरह फैंटास्टिक फैसिलिटी के साथ बन रहा है। रिंग रोड है, एक्सप्रेसवे है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, एम्स है, फर्टिलाइजर शुरू हो गई बा, 4 गो यूनिवर्सिटी, आयुष विद्यालय, सैनिक विद्यालय, शूटिंग रेंज। ग्रामीण के बच्चे अब ग्रामीण नहीं रहेंगे, इंटरनेशनल होंगे। तैयारी रखा, जितने बच्चे आए हैं हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूं। मेरी बेटियां भी वर्ल्ड कप ले आई हैं, बेटियां लोग इंडिया में, अब बेटियां कहीं कम नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर मंच देने के लिए इस तरह के स्टेडियम अत्यंत आवश्यक हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश में हर जो है जितने हमारे ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से और खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ हुआ है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये भी हमारी सरकार ने तय किया, हमारा खेल और युवा कल्याण विभाग ने तय किया है उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर, कि हर विकास खंड स्तर पर एक ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को हम करेंगे और उसे भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। जैसे हमारा नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, हमारा खिलाड़ी हो, उसको खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव न हो सके, उसको सुविधा मिल सके, इस दिशा में कदम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ाए। हमारे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन 75 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बात को चिन्हांकित किया गया कि कौन सा ऐसा जिला है जिन मुख्यालयों पर अभी स्टेडियम नहीं बना है, उनको भी चिन्हित करके, वो 4 जिले ऐसे थे, शामली, हापुड़ और संभल और चंदौली, उन चारों जिलों में भी पैसा मुक्त करके वहाँ खेल और खिलाड़ी के छात्र के लिए नौजवान के लिए वहाँ खेल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने तेजी के साथ किया है। जिला मुख्यालयों पर जो हमारे स्टेडियम बने हैं वहाँ जो है चाहे वो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की जरूरत हो, एस्ट्रो ट्रैप की जरूरत हो, स्विमिंग पूल की जरूरत हो, बास्केटबॉल कोर्ट की जरूरत हो, ये सभी प्रकार की सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश, मैं आज इस बात के बधाई और धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे युवा के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश था लेकिन यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करके उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। वहाँ कक्षाएं भी प्रारंभ हुई, सत्र प्रारंभ हो गया, तेजी के साथ चल रहा। वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर और इसके साथ जो है हमारा जो है कानपुर का जो स्टेडियम है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं नहीं थी उसको बजट में प्राविधान करके कानपुर के स्टेडियम को भी सुदृढ़ीकरण करने का काम और अयोध्या में जो बहुत लंबे समय से पड़ा था उस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का काम और आज गोरखपुर में ये नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटियम का जो है शिलान्यास करके जिसकी लागत 393 करोड़ की है, 30,000 सीट की बनने वाला है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, उनको खेलने के लिए, उनको सुविधा देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हमारे युवा, नौजवान, खिलाड़ी सब आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और बताना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी कमिश्नरी है, हमारा जो मंडल है, हर कमिश्नरी स्तर पर हमारा जो स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में

0: आगे बढ़ेगा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्टेडियम क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। उन्होंने कहा कि सेवाओं को आगे बढ़ने का नया रास्ता मिलेगा।
2: आज हम सब गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं इसलिए इस बात को पूछा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 30 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन गोरखपुर में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सेंट्रीड्यूस जी की कॉलेज को छोड़कर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था। लेकिन जो सौगात आपने हम लोगों को दिया है, ये निश्चित गोरखपुर के लिए ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए हुआ है साथियों, पूरे पूर्वांचल के लिए। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में आज इतना विशाल 42 एकड़ में करीब 30,000 की क्षमता से यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर विराट कोहली जैसे लोग, रोहित शर्मा जैसे लोग, यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकलने की हम ऐसी तमन्ना और उम्मीद रखते हैं साथियों। क्योंकि आज भी हमारे गोरखपुर से आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था ना होने के नाते लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, कानपुर जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था। और हम लोगों को जब मैच देखना होता था तो हम लोग लखनऊ या कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन मैं कह सकता हूँ अब हम लोग को इंटरनेशनल मैच देखना होगा या आईपीएल मैच देखना होगा तो 2029 में हम लोग इसी ग्राउंड पर देखने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का विशेष तौर पर ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। साथियों, इस पूर्वांचल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे तमाम विकास की परियोजना आई है, एम्स बने, सड़क बने, पुलिया बना, बहुत सारे ऐसे काम हुआ। बगल में वेटनरी बन रहा, इतना बड़ा सा जानवरों का अस्पताल बन रहा, ऐसे तमाम विकास हुए, लेकिन हमारे पास स्पोर्ट इंफ्रा नहीं था। साथियों, आज हम ये कह सकते हैं कि गोरखपुर के पास इंटरनेशनल स्टेडियम है साथियों, और इंटरनेशनल स्टेडियम खुलने से, बनने से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी। साथियों, यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं, पेट्रोलियम विभाग ने यहाँ पर एथेनॉल प्लांट लगाया है, दो दो तीन तीन फैक्ट्रियां लाइन में लगने के लिए। लेकिन जो कमी थी, जो किसक थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इससे बहुत पहले घोषणा किया था कि गोरखपुर में हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन जगह न होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोचा विचारा, और ये मेरा सौभाग्य है कि बांसगांव के धरती पर सटे गोरखपुर ग्रामीण और बांसगांव संसदीय क्षेत्र के दोनों के बॉर्डर पर बना। इसलिए भी मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गोरखपुर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना क्षेत्र के समस्त विकास को नई गति देगी।
3: गोरखपुर की इस पावन धरती पर आज उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है। आज का ये अवसर केवल एक स्टेडियम परियोजना के शुभारम्भ का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं के सपनों, ऊर्जा और संभावनाओं को एक नई दिशा देने का संकल्प है। 45 एकड़ में बनने वाला ये आधुनिक स्टेडियम, जिसकी दर्शक क्षमता कोई 30,000 होगी, आने वाले समय में पूर्वांचल के युवा के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल क्रिकेट मैच ही नहीं, यहाँ सपने तैयार होंगे, यहाँ नई प्रतिभाएं जन्म लेंगी, यहाँ से भारत का भविष्य निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ये परियोजना पूर्वांचल के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास देगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा और गोरखपुर को खेल मानचित्र पर स्थापित करेगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त होगा।
4: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी, भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ी। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वह विजन हमारा युवा अपने सामर्थ्य से लेके आ रहा है, और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना इस सरकार की जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, पाठ्यक्रम गत वर्ष हमने प्रारंभ करवा दिए, और अब उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वाराणसी में BCCI की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 30,000 की क्षमता का यहां पर अनेक पिच के बारे में चर्चा हुई, और इसके लिए 46 एकड़ में तो स्टेडियम बन रहा है, पार्किंग होगी, बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और 60 एकड़ भी हमने रिजर्व करके रखा है इसी के बगल में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर गेम के लिए, हॉकी के लिए, अन्य खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अब होटल भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, मार्केट बनेगा, और जो उपेक्षित था, याद करिए ना, आज से 5 वर्ष पहले तक ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था, बंजर पड़ा हुआ था, जिसकी मर्जी आती थी कब्जा कर लेता था, अब कब्जा मुक्त भी है। इस लैंड पर यहाँ के नौजवानों के भविष्य को तराशने और उसको आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये डबल इंजन की सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। ये विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, ये विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है, और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 4 लेन की कनेक्टिविटी। देखिए, ये सरकार दूरी ही नहीं घटाती है, बल्कि जितनी तेजी के साथ दूरी घटती है उतनी स्पीड बची हुई स्पीड को आपके विकास में लगा करके आपके रोजगार के सृजन में भी उसका उपयोग करती है, और विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी में सीधी भर्ती का अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है,
4: खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहाँ सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है। बहनों और भाइयों, अब तक हम लोग 534 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय को, सुश्री दीप्ति शर्मा को, सुश्री पारुल चौधरी को, शैखिल स्योराण को, श्री अर्जुन देसवाल को, श्री प्रवीण कुमार को और राजकुमार पाल को हम लोगों ने सीधे डिप्टी SP का पद दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को हम लोगों ने नायब तहसीलदार बनाया है, सीधी भर्ती करके इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। अर्जुन सिंह को यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में, सुश्री प्राची और श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण

0: और 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती हम लोगों ने फिर से निकाली है, जिसको बहुत शीघ्र जिन्होंने भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, उन्हें हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करती है जो देश के लिए मेडल जीतते हैं। आज जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। भारत ने 2036 के ओलंपिक के लिए भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी इन सभी प्रतियोगिताओं को भारत के अंदर करके भारत की प्रतिभा को बढ़ाने और भारत के खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य भारत की जमीन पर दिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।
1: करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वांचल के लिए ये परियोजना खेल, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलने की पहल मानी जा रही है।
2: अभी आप गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। संकलन और वाचन नवीन पांडे, प्रस्तुतकर्ता नूर मोहम्मद। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत इस अंतराल के बाद।
3: विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सदा ठाकुर के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: And also infrastructure development that has happened.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद यह घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति

भी एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सैनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म

ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: तुमको भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहार।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन

0: 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी, बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966, निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दरा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैंने, दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: पंडित संगमेश्वर गुरु के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अमूल्य योगदान दें। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 और 14 सेकंड हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल प्रातःकालीन सभा के साथ 5:52 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।